0: तुम परेशान हो तो शायद कल अधिक बेहतर जिंदगी होगी।
1: अनमोल विचार की बात आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए मातृवंदना।

0: श्रोताओं, बेला सुलाखे के गाए इस भजन के साथ ही प्रभाती वंदना कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:55 हुए हैं। अब सुनिए एग्री टिप्स कार्यक्रम।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करते हैं गन्ने में लगने वाले कीड़े एवं बीमारियों के संदर्भ में। गन्ने की खेती करते समय इस पर लगने वाले कीड़ों एवं रोगों का भी सामना करना पड़ता है। गन्ने के कीड़ों व रोगों को अच्छी तरह से नियंत्रित करके इसकी उपज काफ़ी बढ़ाई जा सकती है। गन्ने में लगने वाले कीड़ों में सबसे प्रमुख है तनाछेदक। तनाछेदक नामक कीड़ा गन्ने की फसल की बाद वाली अवस्था में अधिक हानि पहुंचाता हुआ पाया गया है। इस कीड़े के वयस्क पतंगे होते हैं। गन्ने को हानि तनाछेदक कीड़े के कैटरपिलर या शिशुओं द्वारा की जाती है। ये नन्हे नन्हे शिशु गन्ने को अंदर ही अंदर खा डालते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि गन्ने का पौधा सूख कर मर जाता है। तनाछेदक के बाद बारी आती है लीफ व प्लांट हॉपर की। ये कीड़े गन्ने की पत्तियों को निचली सतह से चूसकर हानि पहुंचाते हैं। इन कीड़ों के वयस्क व शिशु दोनों ही अवस्थाएं हानिकारक होती हैं। ये कीड़े सिर्फ रस चूसकर ही गन्नों पर आक्रमण नहीं करते, बल्कि कुछ बीमारियों का भी ये कारण बनते हैं, यानी कुछ बीमारियों के कारकों को स्वस्थ पौधों तक पहुंचाने में ये सहायता करते हैं। इस प्रकार से प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों रूप से ये गन्ने के शत्रुओं में आते हैं। मिलीबग नामक कीड़े गन्ने के पौधों पर तने के चारों ओर दिखाई पड़ते हैं। इन कीड़ों की वजह से पौधों पर सफ़ेद रंग का धूल सा दिखाई देता है। इनके वयस्क व शिशु दोनों ही अवस्थाएं गन्नों को नुकसान पहुंचाती है। मिलीबग नामक कीड़ों का प्रकोप गन्ने की पेड़ी फसल पर ज़्यादा होता है। तनाछेदक कीड़ों के नियंत्रण हेतु भूमि पर कार्बोफ्यूरॉन 3G नामक दानेदार कीटनाशक रसायन का बुरकाव करें। इस दानेदार कीटनाशी के 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व को प्रति हेक्टेयर भूमि के हिसाब से प्रयोग में लाना चाहिए। इस कीटनाशी को पौधों की सतह पर कुदाल आदि की मदद से भूमि में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। गन्ने पर मिलीबग, लीफ हॉपर व प्लांट हॉपर नामक कीड़ों के प्रकोप को देखते समय इसमें मेलाथियन नामक कीटनाशक दवा का प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ तक रोगों का सवाल है, गन्ने के रोगों में सबसे प्रमुख है रोग काना या रेड रॉट रोग। इसमें पत्तियां फटकर मुरझाकर लटक जाती हैं तथा शाखाएं मर जाती हैं। अगर ऐसे पौधों को लंबाई में बीज से काटा जाए तो बीच में लाल रंग की धारी दिखाई देती है, जिससे एक प्रकार की गंध आती है। गन्ने की दूसरी बीमारी है कंडुआ बीमारी, जिसे स्मट भी कहते हैं। ये अधिकतर खेत में दूसरी फसल के लिए छोड़े गए गन्ने से उगे छोटे छोटे पौधों में लगते हैं। इस बीमारी से पौधों में बहुत सारी शाखाएं निकल आती है और अंत में सबसे ऊपर एक काले रंग की चाबुक जैसी वस्तु निकल आती है, जिसमें कि रोगाणु भरे होते हैं। तीसरी बीमारी है ग्रासी रूट रोग। ये रोग पौधों में आधार पर ही बहुत सारी शाखाएं के निकल जाने से दिखाई पड़ती है और पत्तियां घास की तरह पीले पीले रंग की और पतली पतली हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त गन्ने में उकटा रोग भी देखा गया है।

0: रोगों की रोकथाम के लिए स्वस्थ बीज का प्रयोग करें, क्योंकि अधिकतर रोग बीजों से ही फैलते हैं। बौने पौधों व उकटा अथवा कंडवा रोग से ग्रसित पौधों को निकालकर जला देना चाहिए। पत्ती के झुलसा रोग की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसान भाइयों, इस प्रकार सुझाई गई बातों को ध्यान में रखकर आप गन्ने में लगने वाले कीड़े एवं बीमारियों की रोकथाम कर लाभान्वित हो सकते हैं।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना एग्रीटिप्स कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे की 6 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है, और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम

तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी रंगत अब से कुछ ही देर यानी 7 बजे मायबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल सवेरे 7 बजे मायबंदर होते हुए श्रीविजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी स्टेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस बीच ये जलयान दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा। जलयान की वापसी आज ही दोपहर 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्रीविजयपुरम लौटेगा। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस बीच ये जलयान दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा। जलयान की वापसी आज ही दोपहर 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी आज ही शाम 4:30 पर श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल सवेरे 5:30 पर श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी स्टेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी।

एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल सवेरे 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस बीच ये जलयान 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा।

एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस बीच ये जलयान दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा। जलयान की वापसी कल ही दोपहर 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी हटबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उसी दिन शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन दिनांक 5 को सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। ये था जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

नमस्कार श्रोताओं, आपका हार्दिक स्वागत है इंद्रधनुष कार्यक्रम में। कहा जाता है, शब्दों की उम्र भले छोटी हो लेकिन सच्चे वादे उम्र भर साथ चलते हैं। एक वादा कभी किसी की मुस्कान की वजह बन जाता है तो कभी किसी के इंतजार का सहारा। तो आइए कुछ पलों के लिए दिल की धड़कनों को सुरों के हवाले करें और चल पड़े वादों, यादों और मधुर संगीत के सफर में। जी हाँ श्रोताओं, आज का हमारा शीर्षक है वादा। कहते हैं एक सच्चा वादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है। वादा शब्द नहीं, यह विश्वास का दूसरा नाम है। जब कोई अपना वादा निभाता है तो रिश्तों में अपनापन और भी गहरा हो जाता है। जीवन में परिस्थितियां बदल सकती है लेकिन सच्चे वादे अपनी अहमियत कभी नहीं खोते। प्यार हो, दोस्ती हो या पारिवारिक रिश्ता, हर संबंध विश्वास और वादे पर टिका होता है।

श्रोताओं, जब दो दिल एक दूसरे से सिर्फ प्यार का इजहार करते हैं, तब वो इजहार ही नहीं करते बल्कि जीवन की हर राह पर साथ चलने और कभी एक दूसरे का हाथ न छोड़ने का वादा भी करते हैं। जीवन के हर मोड़ पर जब कोई हमारा अपना हाथ थाम कर यह भरोसा दिलाता है कि वह हर खुशी और कठिनाई में हमारे साथ रहेगा, तब रिश्तों की खूबसूरती महक उठती है।

श्रोताओं, एक सच्चे रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान यह नहीं कि उसमें कभी मुश्किलें नहीं आती, बल्कि यह है कि हर परिस्थिति में साथ निभाने का विश्वास बना रहता है। जब कोई अपना हाथ थाम कर साथ चलने का वादा करता है, तो जीवन का हर सफर आसान और हर चुनौती छोटी लगने लगती है। यही साथ, यही भरोसा और यही अपनापन रिश्तों को उम्र भर की मजबूती देता है। तो श्रोताओं, यदि अपने साथ हो तो जीवन की हर राह आसान हो जाती है और हर मंजिल मुस्कुराने लगती है।

0: तो श्रोताओं, इंद्रधनुष कार्यक्रम के इस सफर में अपने दोस्त शाहिना को दीजिए इजाजत। अगले अंक में एक और नए शीर्षक के साथ हम हाजिर होंगे। नमस्कार, सुप्रभात।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे, जो केंद्रित था वादा शीर्षक पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:29 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान की 319वीं कड़ी।

लंका में घमासान युद्ध हो रहा है। अंगद और हनुमान ने रावण के किले में घुसकर राक्षस सेना में ऐसी उथल पुथल मचा दी मानो दो मंदराचल समुद्र मंथन कर रहे हों। दिन का अंत हुआ। अनेक असुरों का संहार करके अंगद और हनुमान श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए, लेकिन उनके युद्धभूमि से हट जाने के बाद राक्षस एक बार फिर वानर सेना पर टूट पड़े। आसुरी माया से राख, पत्थर और रक्त की वर्षा होने लगी। चारों ओर अंधकार छाया देख वानर सेना में खलबली मच गई। श्री राम से ये रहस्य छिपा न रहा, उन्होंने अग्निबाण चलाकर चहुं ओर प्रकाश फैला दिया।

0: श्रोताओं, अभी आप रामचरित मानस गान की 319वीं कड़ी सुन रहे थे। गायिका थी अनुराधा पौडवाल और संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:40 होने वाले हैं। अब लीजिए सुनिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सहकारी समितियां आत्मनिर्भरता की मजबूत कड़ी पर समाचार वार्ता। लेखक और वाचक है चित्रकांत शर्मा।
1: समुद्र की विशाल लहरों के बीच बसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पहचान केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और सामरिक महत्व से ही नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों की सामूहिक भावना और आत्मनिर्भरता की सोच भी इसकी पहचान है। अंडमान निकोबार जैसे द्वीपीय क्षेत्र में संसाधनों का उपयोग और स्थानीय भागीदारी विकास की कुंजी है। सहकारी समितियाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला के रूप में उभर रही है। सहकारी समिति एक ऐसी स्वैच्छिक संस्था होती है जिसमें लोग समान आर्थिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करते हैं। इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करते हुए सामूहिक विकास को बढ़ावा देना होता है। इसमें प्रत्येक सदस्य की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है और निर्णय प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से संचालित होती है। कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी, उपभोक्ता सेवाएं, आवास, हस्तशिल्प, ऋण सुविधा, महिला सशक्ति और अन्य क्षेत्रों में सहकारी समितियां लोगों को संगठित कर आर्थिक अवसर उपलब्ध कराती हैं। अंडमान निकोबार में विशेष रूप से मत्स्य पालन, कृषि, लघु व्यवसाय और स्थानीय उत्पादों के विपणन में इन समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सहकारी समितियां अपने सदस्यों के योगदान और सामूहिक निर्णयों के आधार पर संचालित होती हैं। सदस्य मिलकर पूंजी जुटाते हैं, योजनाएं बनाते हैं और आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। इससे छोटे स्तर पर काम करने वाले लोगों को भी बाजार, वित्तीय सहायता और बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। द्वीपीय क्षेत्रों में सहकारी समितियों का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ परिवहन, बाजार तक पहुँच, संसाधनों की उपलब्धता जैसी चुनौतियाँ रहती हैं। सहकारी व्यवस्था स्थानीय लोगों को एक मंच प्रदान करती है, जिससे वे अपने उत्पादों और सेवाओं को बेहतर तरीके से विकसित और व्यवस्थित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मत्स्य सहकारी समितियाँ मछुआरा समुदाय को संगठित कर सकती हैं। कृषि सहकारी समितियाँ किसानों को संसाधन और विपणन सहायता उपलब्ध करा सकती हैं, जबकि महिला सहकारी समितियाँ महिलाओं को रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता के अवसर दे सकती हैं। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार इस वर्ष 15 जुलाई तक देश में कुल 853,430 सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। इनमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कुल 2,244 सहकारी समितियां हैं। यह संख्या भले ही बड़े राज्यों की तुलना में छोटी दिखाई दे, लेकिन द्वीपों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इसका विशेष महत्व है। अंडमान निकोबार में कुल 2,244 सहकारी समितियों में से 1,217 समितियां कार्यशील, 881 समितियां अक्रियाशील और 146 समितियां परिसमापन की स्थिति में है। यह आंकड़ा बताता है कि द्वीप समूह में सहकारी आंदोलन की अच्छी मौजूदगी है, लेकिन कई समितियों को पुनर्जीवन और बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता भी है। कार्यशील 1,217 सहकारी समितियों में से 372 समितियां लाभ में चल रही हैं, जबकि 843 समितियां हानि में हैं। केवल दो समितियों की वित्तीय जानकारी

0: उपलब्ध नहीं है। यह स्थिति संकेत देती है कि सहकारी संस्थाओं को अधिक व्यावसायिक दृष्टिकोण और आधुनिक प्रबंधन, बाजार से बेहतर जुड़ाव और नई गतिविधियों में विस्तार की जरूरत है। सहकारिता मंत्रालय द्वारा डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में बदलने की पहल की जा रही है। इसका उद्देश्य समितियों को केवल एक गतिविधि तक सीमित न रखते हुए उन्हें विविध आर्थिक कार्यों से जोड़ना है। अंडमान निकोबार के संदर्भ में यह पहल काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। यहाँ कृषि, मत्स्य पालन, पर्यटन, स्थानीय हस्तशिल्प और छोटे व्यवसायों को एक साथ जोड़कर सहकारी समितियाँ आय के नए स्रोत विकसित कर सकती हैं। अंडमान निकोबार में सहकारी समितियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। इनमें सीमित बाजार, परिवहन की कठिनाइयाँ, तकनीकी संसाधनों की कमी और कुछ समितियों का निष्क्रिय होना प्रमुख है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद यहाँ सहकारिता के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। डिजिटल तकनीक, बेहतर प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और स्थानीय उत्पादों के प्रभावी विपणन से सहकारी समितियों को नई ऊर्जा दी जा सकती है। विशेष रूप से मत्स्य पालन, पर्यटन आधारित गतिविधियों, जैविक कृषि और महिला उद्यमिता के क्षेत्रों में सहकारी मॉडल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सहकारी समितियाँ केवल आर्थिक संस्थाएं नहीं है, बल्कि वे स्थानीय समुदायों की एकजुटता, आत्मनिर्भरता और विकास की भावना का प्रतीक हैं। समुद्र से घिरे इस क्षेत्र में सहकारिता लोगों को अवसरों से जोड़ने और विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रभावी माध्यम बन सकती है। आने वाले समय में यदि सहकारी समितियों को आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रबंधन और मजबूत नीतिगत सहयोग प्राप्त होता है तो वे अंडमान निकोबार की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सहकारी समितियां आत्मनिर्भरता की मजबूत कड़ी पर समाचार वार्ता सुन रहे थे। लेखक और वाचक थे चित्रकांत शर्मा। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:45 हुए हैं। अब सुनिए वतन के गीत।

श्रोताओं, अभी आप वतन के गीत कार्यक्रम के तहत कुछ देशगान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:50 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी और आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों में हल्की सी मध्यम वर्षा हुई। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर यानी 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं। प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा 7:05। 7:15 पर सुनिए देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के तहत सवेरे 7:30 पर कुछ फिल्मी गीतों का आनंद आप ले पाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर फनकार होंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। तराने सुहाने कार्यक्रम का लुत्फ लीजिए सवेरे 9 बजे। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप प्रेमा हरिहरन का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुनेंगे। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा 10 बजे। दिन के 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित की जाएगी। 11:30 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम में किशोर कुमार के कुछ गीत आप सुनेंगे। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम सुनिए। 12:30 पर सुनिए मलयालम कार्यक्रम। 1:10 पर सुनिए समूहगान शिक्षा का कार्यक्रम। व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का समय रहेगा 1:30। 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ साथ हमारी पहली सभा समाप्त होगी, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत 2:30 पर हेलो डियर फ्रेंड और 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे प्राइमरी चैनल पर शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकार होंगे हेमा सरदेसाई। 4:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रमों का विवरण। बहारों की शाम फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा 4:45 पर। शाम 5 बजे सुनिए तमिल कार्यक्रम। 5:30 पर सुनिए बांग्ला कार्यक्रम। कृषि जगत कार्यक्रम में संध्या 6 बजे डॉक्टर MS कुंडू से की गई बातचीत का विषय रहेगा बकरियों के लिए संतुलित आहार। पॉप मसाला कार्यक्रम का आनंद लीजिए 6:30 में। 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाएं। 7:20 पर फिल्मी गीत आप सुन पाएंगे दिल में फिर याद किया कार्यक्रम में। 7:30 पर युवानी के तहत सुनिए पुरानी फिल्मी गीतों पर कार्यक्रम यादें। रात 8:15 पर सुनिए चित्रपट संगीत। रोजगार समाचार के बाद कुछ देशगान आप सुन पाएंगे रात 8:30 पर। और रात 10 बजे विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत।

0: इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर पब्लिक स्पीक और 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनवाई जाएगी, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 11 बजे मौसम की जानकारी के साथ सभा की समाप्ति होगी। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:55 हुए हैं। अब संस्कृत में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् यथा भारतं विकसित भारत दिशि अग्रेसरति, तथा देशस्य युवानः शारीरिकरूपेण सुदृढाः, मानसिकरूपेण सबलाः, आत्मविश्वासेन च परिपूर्णाः भवितुमर्हन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशामुक्त युवाभियानस्य दृश्यश्रव्य अन्तर्जालीय माध्यमेन शुभारम्भावसरे भाषमाणः प्रधानमन्त्री अवदत् यत् युवानः सर्वदा मादकद्रव्येभ्यः दूरं तिष्ठेयुः, अथ स्वस्थजीवनचर्यां च अङ्गीकुर्युः। असौ एतदपि अवदत् यत् अस्य अभियानस्य शुभारम्भेण मादकद्रव्यदुरुपयोगस्य विरुद्धं शतसप्ताहकात्मकस्य राष्ट्रव्यापिनः जनभागीदारी इत्यस्य अभियानस्य आरम्भः जातः।
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: अस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य 28,000 स्थानेभ्यः 1 कोट्यधिकाः युवानः भागं गृहीतवन्तः। अत्र माय भारत इत्येतस्य राष्ट्रिय सेवा योजनायाः च स्वयंसेवकाः, महाविद्यालय विद्यालय विश्वविद्यालयानां प्रतिनिधयः, युवकमण्डलानाम् अशासकीय संघटनानां च तथा आध्यात्मिक संस्थानां सदस्याश्च भागं गृहीतवन्तः। केन्द्रीय युव कार्य क्रीडा मंत्री डॉ मनसुख मांडविया अवदत् यत् मादकद्रव्य मुक्त भारतस्य स्वप्नं केवलं जनसहभागितया यूनां नेतृत्वेन च पूर्णा भवितुमर्हति। विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य राष्ट्रिय शुभारम्भानन्तरं असौ फरीदाबाद स्थिते अमृत चिकित्सालये आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे एतदवदत्। डॉक्टर मांडविया एतत् शतसप्ताहकात्मकम् अभियानं यूनः राष्ट्र निर्माणे प्रवर्तयितुं राष्ट्रव्यापि जनान्दोलनम् इति वर्णितवान्। बिहार गुजरात मध्यप्रदेशानां च त्रयाणां विधानसभाक्षेत्राणाम् उपनिर्वाचनानां कृते अद्य मतगणनायै सर्वाः व्यवस्थाः कृताः सन्ति। बिहारस्य बांकीपुरे, गुजरातस्य मंजलपुरे, मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च मतदानं गतमासस्य 30 दिनांके जातम्। अद्य प्रातः 8 वादने मतानां गणना आरभ्यते। प्रथमं पोस्टलिति मतपत्राणां गणना भविष्यति। तदनन्तरं प्रातः 8:30 वादने मतदानयन्त्रेषु अभिलेखितानां मतानां गणना भविष्यति। निर्वाचनायोगेन त्रिषु राज्येषु सुगम गणनां सुनिश्चेतुं दृढ सुरक्षाव्यवस्था कृतास्ति। मध्यप्रदेशे दतिया विधानसभाक्षेत्रस्य गणना प्रशासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालये भविष्यति, यत्र 20 गणनापट्टिकाः स्थापिताः सन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य ओडिशाराज्यस्य 3 दिवसीयायां यात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ राष्ट्रपतिः

0: गंजम जनपदस्य कटक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर तप्तापानी स्थलेषु शैक्षणिक सांस्कृतिक आधिकारिक कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। अद्य राष्ट्रपतिः कटकनगरे जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालयस्य उद्घाटनं करिष्यति। एकादशदिनात्मकानां स्पर्धानां समापनानन्तरं ह्यः ग्लास्गोनगरे भव्यसमारोहेण राष्ट्रमण्डलक्रीडा सम्पन्ना। भारतमेकोनचत्वारिंशत् पदकैः सह पदकतालिकायां चतुर्थस्थानम् अधिगतवत्। एतेषु त्रयोदश स्वर्णपदकानि, सप्तदश रजतपदकानि, नव कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 MHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। जन सूचनाएं इसके अंतर्गत पहले सुनिए मौसम। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के इलाकों में 12.4 मिलीमीटर वर्षा हुई। आज सुबह 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 95% और न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 30.4 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:07 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:44 पर।

श्रोताओं लीजिए अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त विमान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहे यात्री विमान संख्या 2937 आज दिन के 11 बजे तक श्रीविजयपुरम पहुंचने की संभावना है, जबकि यात्री विमान संख्या 2936 दिन के 11:40 पर श्रीविजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त विमान संबंधी जानकारी।

सूचना, क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब से उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राष्ट्रीय स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं 7:05 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग की दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। ऑल इंडिया कोटा के तहत MBBS और दूसरे अंडर ग्रेजुएट चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए परामर्श का पहला दौर कल से शुरू होगा। विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत नशा मुक्त युवा विषय के साथ कल डिबेट में मुख्य जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल भर्ती के लिए नियमों के तहत कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। और जेम्स ऑफ इंडिया के पायलट चरण के लिए प्रविष्टियाँ 31 अगस्त तक जमा की जा सकती हैं।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। ऑल इंडिया कोटा के तहत एमबीबीएस और दूसरे अंडर ग्रेजुएट चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए परामर्श का पहला दौर कल से शुरू होगा और 2026-27 बैच का शैक्षणिक सत्र 8 सितंबर से शुरू होगा। चिकित्सा काउंसलिंग कमेटी एमसीसी के जारी कार्यक्रम के मुताबिक डीम्ड और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए परामर्श का पहला दौर कल से 17 अगस्त तक होगा। परामर्श में शामिल होने की अंतिम तिथि 22 अगस्त होगी। परामर्श का दूसरा दौर 24 अगस्त से 2 सितंबर तक और इसके बाद तीसरा चरण 10 सितंबर से 18 सितंबर तक होगा। बची हुई सीटों को 18 सितंबर से 3 अक्टूबर तक भरा जाएगा। प्रवेश करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है। राज्य की आरक्षित सीटों के लिए परामर्श का पहला चरण 13 अगस्त से 22 अगस्त तक होगा और प्रवेश करने की तिथि 28 अगस्त तक निर्धारित है। दूसरा दौर 31 अगस्त से 30 सितंबर तक और तीसरा चरण 16 सितंबर से 26 सितंबर तक चलेगा। एमसीसी ने नीट यूजी 2026 परामर्श प्रक्रिया में कई सुधार किए हैं, जिसमें सीट अपग्रेड चुनने वाले उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य फिजिकल रिपोर्टिंग को खत्म करना भी शामिल है, ताकि दाखिला प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विद्यार्थी अनुकूल बनाया जा सके। राष्ट्रव्यापी अभियान विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत नशा मुक्त युवा के हिस्से के रूप में अंडमान निकोबार प्रशासन ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के माई भारत के सहयोग से कल डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में मुख्य जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव चंचल यादव ने छात्रों और युवाओं को नशा विरोधी शपथ दिलाई। राष्ट्रीय अभियान के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे संबोधन का सजीव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, संकाय सदस्यों, छात्रों, माई भारत के स्वयंसेवकों और आम जनता ने भाग लिया। अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से ठोस एवं प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर 2 दिवसीय मास्टर ट्रेनर कार्यशाला का आयोजन किया गया। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली के सहयोग से ठोस कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को व्यवहारिक रूप देना विषय पर ये कार्यशाला पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत नॉर्वे मरीन प्रदूषण पहल के चरण 2 के तहत आयोजित की गई।

0: इस कार्यक्रम में लगभग 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया। समापन सत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सदस्य सचिव सह निदेशक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कचरा प्रबंधन आवश्यकताओं का पालन न केवल एक बाध्यता है, बल्कि इसे एक व्यवहारिक बदलाव के रूप में अपनाया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। अंडमान निकोबार प्रशासन वाइपर और एंडरसन द्वीप के लिए एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजनाएं तैयार करने का कार्य नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट चेन्नई को सौंपा है। एनसीएससीएम ने द्वीप का प्रारूप, तटीय भूमि उपयोग मानचित्र तथा भू आकृति विज्ञान मानचित्र प्रस्तुत किए हैं और आम जनता एवं हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। ये मानचित्र प्रशासन तथा पर्यावरण एवं वन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसकी सॉफ्ट कॉपी विभिन्न कार्यालयों में भी उपलब्ध कराई गई है। संबंधित हितधारक अपने विचार, टिप्पणियाँ, सुझाव तथा वर्तमान या प्रस्तावित परियोजनाओं का विवरण हैडो स्थित वन सदन के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है सशस्त्र सीमा बल और जेम्स ऑफ इंडिया।
1: गुड न्यूज फॉर द पीपल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जुंगलिघट लेकर आया है एक नई शुरुआत। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अंडमान, फुल टाइम न्यूरोलॉजी and full-time gynecology and obstetric specialist services are now available under one roof. अब माइग्रेन, लकवा, मिर्गी, चक्कर, नसों की बीमारियां, याददाश्त की समस्याएं, ईईजी, ईएमजी और एनसीवी जैसी उन्नत जांचों के साथ साथ गर्भावस्था की देखभाल, बांझपन, इनफर्टिलिटी, पीसीओएस, महिलाओं की सभी सामान्य एवं जटिल समस्याओं का विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध है। स्वास्थ्य से समझौता न करें। विजिट हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जुंगलिघट।
0: आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय की ओर से सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। नए नियम 27 जुलाई से लागू हो चुके हैं। अधिसूचना के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी। पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित पदों की भर्ती 2 चरणों में होगी। पहले चरण में 50% आरक्षित पदों को भरा जाएगा और दूसरे चरण में बाकी रिक्तियों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएंगी। पहले अग्निवीर बैच के उम्मीदवारों को अधिकतम 5 वर्ष और बाद के बैचों को अधिकतम 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इस बीच द्वीप समूह में 23 से 26 अगस्त तक नेताजी स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार इस रैली में भाग ले सकते हैं। उम्मीदवारों से प्रवेश पत्र www.joinindianarmy.nic.in से डाउनलोड करने को कहा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्थानीय संगीत एवं सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द्वीप समूह के युवाओं और डिजिटल रचनाकारों से जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में भाग लेने का आग्रह किया गया है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसार भारती के सहयोग से शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। संस्कृति और विरासत, स्थानीय व्यंजन, लोक परंपराएं, प्रदर्शन कलाएं, प्रकृति, इको टूरिज्म और प्रेरणादायक स्थानीय कहानियां विषय के साथ प्रतिभागी 1 से 3 मिनट की अवधि के छोटे वीडियो, रील्स और ब्लॉग्स के साथ वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना मूल कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। पायलट चरण के लिए प्रविष्टियां जमा करने की विंडो 31 अगस्त तक खुली रहेगी। विभिन्न स्तर के प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अधिक जानकारी माई वेव्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। अंडमान निकोबार पुलिस की भर्ती से

संबंधित कुछ पदों के लिए रिक्तियों और श्रेणीवार रिक्तियों में प्रशासनिक कारणों से संशोधन किया गया है। मुख्य भूमि के जिन उम्मीदवारों ने कार निकोबार को अपना केंद्र चुना था, उनका केंद्र बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। उम्मीदवारों का श्रेणीवार शारीरिक परीक्षण 7 सितंबर से शुरू होगा। प्रवेश पत्र अंडमान निकोबार पुलिस पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार पुलिस मुख्यालय के भर्ती प्रकोष्ठ के ईमेल या फोन के माध्यम से किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऑल इंडिया कोटा के तहत MBBS और दूसरे अंडर ग्रेजुएट चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए परामर्श का पहला दौर कल से शुरू होगा। विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत नशा मुक्त युवा विषय के साथ कल डीब्रेट में मुख्य जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल भर्ती के नए नियमों के तहत कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे और जेम्स ऑफ इंडिया के पायलट चरण के लिए प्रविष्टियां 31 अगस्त तक जमा की जा सकती हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम देश रागिनी।

देशरागिनी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा गीत जो आपके दिल को छू जाएगा। ये सिर्फ एक गीत नहीं, एक भाव है, अपने देश के लिए पूरी जिंदगी समर्पित कर देने का संकल्प। ये गीत हमें उन वीर जवानों की याद दिलाती है जो अपनी मिट्टी को माँ समझकर उसके लिए सब कुछ लुटा देता है।

दोस्तों, कभी कभी कुछ धुन सुनते ही वतन की मिट्टी की खुशबू, अपने घर की चाह और देश से जुड़े हर एहसास फिर से जिंदा हो जाते हैं। चाहे हम कहीं भी हो, हमारा दिल हमेशा अपने वतन से ही जुड़ा रहता है।

दोस्तों, हर देशभक्ति की धुन में एक अनकही कहानी होती है, हिम्मत, फर्ज और बलिदान की। ये हमें उन वीरों की याद दिलाता है जो अपने वतन के लिए सब कुछ समर्पित कर देते हैं।

तो दोस्तों, वतन से जुड़ी ये धुनें सिर्फ गाने नहीं, दिलों के एहसास है जो हर बार हमें अपने देश के और भी करीब ले आता है। इन्हीं खूबसूरत जज्बातों के साथ अब कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त।

0: श्रोताओं, अभी आप देश रागिनी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

श्रोताओं, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आइए पहले इस कार्यक्रम के तहत सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत। श्रोताओं, सुनते हैं दीवार फिल्म का गीत, जिसे लिखा है साहिर ने, धुन बनाया है RD बर्मन ने और गाया है भूपिंदर और साथियों ने।

हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में तैयार यकीन फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने और रचना की है समीर ने।

हम हो गए आपकी फिल्म से आइए सुनते हैं ये गीत जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। धुन बनाया है नदीम श्रवण ने और रचना की है समीर ने।

कुणाल गांजावाला के स्वर में आइए सुनते हैं प्यारे मोहन फिल्म का ये गीत, रचना समीर की और धुन अनु मलिक का।

जावेद अख्तर का लिखा गीत के और वसुंधरा के आवाज़ों में धुन बनाया है अनु मलिक ने और फिल्म का नाम है मैं हूं ना।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चुरा लिया है तुमने से। इस गीत को आवाजें दी है सहान और अलका याग्निक ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8 बजे हैं। अब अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंध स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।

0: सर भुवनेश्वर।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की संख्या, संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर

0: स्वरूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुँचेगी। यहाँ शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरि रंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नभर टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के आवाजों में कुछ गजल सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुन

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मुगले आजम से। लता मंगेशकर की आवाज में गीत रचना शकील बदायूनी की और संगीत दिया है नौशाद ने।

अगला गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में चौदहवीं का चांद फिल्म से, रचनाकार शकील बदायूनी और संगीतकार है एम रवि।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत व हेमंत कुमार का संगीतबद्ध किया हुआ, श्रोताओं सुनिए एक ही रास्ता फिल्म से, जिसे गाया है हेमंत कुमार ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: सीमा, सीमा,
2: उठो।
3: क्या हुआ?
2: चेकअप के लिए जाना है ना।
3: सोने दो ना।
2: उठो।
3: अगले हफ्ते चल पड़ते, थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा।
4: गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके।
5: समय का मोल
6: HIV पे कंट्रोल।
4: गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। विजय बेनेटिक की आवाज में सुनिए फिल्म कसम पैदा करने वाले की का ये गीत। गीत रचना अनजान की और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गाइड से। गीत रचना शैलेंद्र की, संगीतबद्ध किया है RD बर्मन ने और आवाज़ है लता मंगेशकर की।

0: हुई हैं।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेमा हरिहरन का गायन। इनके साथ वायलिन पर वीवी रवि, मृदंगम पर के विश्वनाथ अय्यर तथा कंजीरे पर गुंटपल्ली कृष्णमूर्ति राव ने संगति की है। तो लीजिए पहले सुनिए प्रेमा हरिहरन का गाया राग केदार गौला, जो आदि ताल में निबद्ध है।

श्रोताओं, राग केदार गौला सुनने के बाद अब लीजिए सुनिए राग नाट्टा, जो आदिताल में निबद्ध है।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए राग राम मनोहरी, जो रूपक ताल में निबद्ध है।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म केसरी से। मनोज मुंतशिर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया आर को प्रावो मुखर्जी ने।

श्रोताओं, गेस्ट इन लंदन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे ऐश किंग और प्रकृति कक्कर की आवाज़ों में। कुमार का लिखा गीत है ये, वह धुन तैयार की थी राघव ने।

श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए एक सूचना। क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल की शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प

स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का ये अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, अभी आप मुबारक आम फिल्म का गीत सुन रहे थे, जुग्गी यश नार्वेकर, बादशाह और सुकृति की आवाजों में। और अब लीजिए सुनिए फिल्म टॉयलेट का एक गीत। सिद्धार्थ सिंह के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया विक्की प्रसाद ने। आवाजें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मुन्ना माइकल से, जिसे गाया है विशाल मिश्रा और सुनिधि चौहान ने। इस गीत को लिखा कुमार ने।

श्रोताओं, अब प्रस्तुत है मनोज मुंतशिर की लिखी गीत रचना, जिसे संगीत से सजाया MM करीम ने। फिल्म बाहुबली 2 के इस गीत को गाया मधुश्री ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना जब हैरी मेट सेजल फिल्म का एक गीत। आवाजें थी आमन नूरा सिस्टर्स देव नेगी और सुनिधि चौहान की। अगला गीत है फिल्म ट्यूबलाइट से। आवाजें हैं कमाल खान, नकाश अजीज, देव नेगी और तुषार जोशी की।

0: और अब लीजिए सुनिए, ऋषि रिच के संगीत निर्देशन में तैयार वेरोनिका मेहता का लिखा एक गीत, और आवाजें हैं वेरोनिका मेहता और यश नर्वेकर की, फिल्म है हाफ गर्लफ्रेंड।
1: आपकी खिदमत में मैं अपनी चंद गजलें पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है?

इजाजत है। This is the Rishi Rich beat. इजाजत है।

श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए ऐ दिल है मुश्किल फिल्म का गीत। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार प्रीतम तथा गाने वाले कलाकार हैं अरिजीत सिंह।

श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए एक सूचना। क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल की शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का ये अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, ये था फिल्म प्रिंस का एक गीत। आवाजें थी आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की। समीर का गीत व संगीत सचिन गुप्ता का था। और इसी के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल अब यहीं समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1341वीं कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है।
2: वो लिखते हैं, रेडियो उद्घोषक और श्रोता का रिश्ता आवाज से शुरू होकर विश्वास, आत्मीयता और दिलों के जुड़ाव तक पहुंचता है। इसी आत्मीयता को हम उमंग कार्यक्रम में देख सकते हैं। यही जुड़ाव बना रहे।
3: जी हाँ श्रोताओं, यही जुड़ाव बना रहे, हमारी भी यही इच्छा है। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी,

0: प्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी सुनवाई जाती है। इसी कड़ी में श्रोता संवाद में सर अजीत जी और प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी से मनोदर्पण विषय पर बातचीत सुनी और पसंद आई।
1: आगे आपने लिखा है, कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सराहनीय लगी। इस जानकारी को सुनकर विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। श्रोता संवाद में मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी सुनवाने के लिए हम प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी एवं सर अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: एक निवेदन भी करते हैं कि ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित करें। किसी कारणवश ये कार्यक्रम श्रोता सुनने से वंचित रह गए हों तो वो भी इस कार्यक्रम को सुन सकें और कार्यक्रम सुनकर लाभ भी उठा सकें। एक बार पुनः आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और आदित्य जंघेल के साथ साथ अंजलि जंघेल जी का। आप लिखते हैं कि रेडियो की पहचान उसकी आवाज नहीं बल्कि श्रोताओं के दिलों से उनका जुड़ाव है। और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
0: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव लिखते हैं,
1: नियत स्टेशन से अगर हम उमंग कार्यक्रम नहीं भी सुन पाते हैं तो किसी न किसी स्टेशन से जरूर सुन लेते हैं
0: जी,
1: क्योंकि ये आसपास के किसी न किसी स्टेशन से अलग अलग समयों में प्रसारित होता रहता है।
0: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान क्या है?
0: इसका उत्तर है साथियों, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
1: अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, श्री महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे। वे महान देशभक्त और गांधी जी के अनुयायी थे।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था श्रोताओं की, बिजली बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे?
0: इसका उत्तर है लगभग 10,000 बार।
1: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। श्रोताओ, हमने आपसे पूछा था अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है?
0: अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IAS के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा।
1: और श्रोताओ, अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अपनी किस पुस्तक में APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है?
0: साथियों, पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके शिक्षक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
1: तो श्रोताओ, ये थे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करके सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक भी डाउनलोड कर सकते हैं।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर जैसा कि आप जानते हैं, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। श्रोताओ, संदेश जरूर भेजिएगा।
0: जी, आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है मेरी माँ।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है। ये पाठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जेल डायरी का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माता जी की भूमिका को सराहा है।
1: मेरी माँ।

0: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
1: रामप्रसाद बिस्मिल के मुख से निकली इन पंक्तियों से भला कौन परिचित नहीं होगा। ये वो गीत है जिसे लगभग पूरा भारत गाता था।
2: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
1: इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों की रग रग में क्रांति की ज्वाला भर दी थी। इस गीत को गाते गाते न जाने कितने स्वाधीनता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।
3: उनका नाम था रामप्रसाद, लेकिन बिस्मिल के उपनाम से वो बहुत प्रसिद्ध हुए। इसी उपनाम से उन्होंने बहुत सी देशभक्ति की कविताएं और गजलें लिखी। बिस्मिल का अर्थ होता है बेचैन या घायल। रामप्रसाद बिस्मिल एक लेखक, कवि और क्रांतिकारी थे जिनका जीवन हमेशा देश के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
1: वो कहते थे,
0: मेरा रिश्ता क्रांति और कलम दोनों से है।
3: बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के यहां हुआ था। वो बचपन से ही बहुत नटखट प्रवृत्ति के थे। उनका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। उन्हें तैराकी, कुश्ती जैसे खेल बहुत पसंद थे।
1: अपने बचपन और शिक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरे निज दिनों की छटा में लिखा है।
0: जब मैं कोई 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हिंदी अक्षरों का बोध कराया और फिर एक मौलवी साहब के मकतब में उर्दू पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया गया। वहां से मैंने 4th जमात पास की।
3: समय का पहिया चलता गया। उनके पिताजी पर स्वाधीनता संग्राम का बहुत प्रभाव था और शायद इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन उनकी माता के हस्तक्षेप के कारण उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भेज दिया गया।
1: बिस्मिल के जीवन में यदि हम गहराई से झांकें, तो पता चलता है कि वो अपनी माता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जीवन में अपनी माता की भूमिका को बहुत अहम माना है। वो मानते हैं कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो लिखते हैं,
0: 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उनमें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो भी घर पर आया करती थी, उनमें जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों के बाद वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी।
3: साथियों, उन दिनों समाज द्वारा स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है।

0: कि बिस्मिल की माताजी आज भी सब महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और आदर्श हैं।
1: माँ तो माँ होती है बस। वैसे मेरी माता मेरे धर्म कार्यों और शिक्षादि में बड़ी सहायता करती थी। वे प्रातः 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मैं नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन किया करता था और यहीं से मेरी रुचि अध्यात्म और सत्य निष्ठा के प्रति बढ़ी। सच कहता हूं, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो शायद मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता और सत्य के प्रति मेरा इतना अधिक अनुराग न होता।
2: अपनी सत्य निष्ठा के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है।
1: एक बार पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले। आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मामला खारिज हो जाएगा, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव ना हुआ और ना ही मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में मैं हमेशा सत्य का आचरण करता था और चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य बात कह देता था।
0: तो ऐसी थी सत्यवादिता राम प्रसाद बिस्मिल की, और इस शिक्षा की नींव डाली थी उनकी माता जी ने।
2: पराधीन भारत में अपनी पीढ़ी के कई युवाओं की तरह राम प्रसाद बिस्मिल भी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से परेशान थे। माता की शिक्षा, श्रेष्ठ गुरुजनों की प्रेरणा और अनेकानेक देश प्रेम और अध्यात्म से ओतप्रोत साहित्य के अध्ययन ने उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी थी।
0: उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना जीवन देश की आजादी की लड़ाई में समर्पित करने का फैसला कर लिया। 8वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल बहुत कम उम्र में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे।
2: अगस्त 1925 को हुए काकोरी रेल कांड में वो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से छिपकर उसके अंशों को जेल से बाहर भेजते रहे।
0: उनकी आत्मकथा का शीर्षक था मेरे निज जीवन की छटा। आत्मकथा को उनके मित्रों ने प्रकाशित करवा दिया।
2: गोरखपुर जेल में लिखी गई आत्मकथा में उन्होंने अपनी माता को बड़े ही मार्मिक शब्दों में संबोधित किया है।
1: जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला, इस जन्म में तो क्या, मैं अनेक जन्मों में भी प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मां, तुम्हारी ही दया से तो मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी मां, पर मुझे विश्वास है तुम ये सब समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और तुम्हारी कोख कलंकित ना की।

0: अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा तुम्हारा बेटा। मां, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसके किसी पन्ने पर तुम्हारा नाम भी उज्ज्वल अक्षरों में लिखा।
1: काकोरी रेल कांड में उन पर मुकदमा चला और उनके साथ तीन और क्रांतिकारी साथियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई।
2: कहते हैं अलविदा हम अब इस

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माँ, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम राग शंकरा।
1: इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध राग शंकरा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके स्वर विस्तार, आरोह अवरोह, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में भी बताया गया है।

राग शंकरा। राग शंकरा की उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है। इसके आरोह में ऋषभ और मध्यम अर्थात रे और म तथा अवरोह में केवल मध्यम यानी म वर्जित स्वर है। परंतु राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऋषभ अर्थात रे का प्रयोग कर्ण स्वर के रूप में किया जाता है। आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व शाड़व है। इसका वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर निषाद अर्थात नी है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग शंकरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए

तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वरमालिका की स्थाई।

अभी आपने राग शंकरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, हम आशा का दीप जलाएं। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम राग शंकरा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: सौम्या मलिक,
1: जगबंधु और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1341वीं कड़ी सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही कलाकार। इसके तहत आज हम आपको सुनवाएंगे किशोर कुमार के गाए कुछ गीत। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम के साथ मैं हूं श्री विद्या। आज का ये विशेष अंक समर्पित है भारतीय सिनेमा के उस अनोखे फनकार को जिनकी आवाज़ में शरारत थी, दर्द भी था, रोमांस भी था और जिंदगी का उत्साह भी। हम बात कर रहे हैं महान गायक, अभिनेता, संगीतकार, गीतकार, निर्माता और निर्देशक किशोर कुमार जी की। 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे किशोर कुमार का वास्तविक नाम आभास कुमार गांगुली था। संगीत की उन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा नहीं ली, लेकिन अपनी अनोखी शैली

0: श्रोताओं, किशोर कुमार की गायकी की सबसे बड़ी खासियत थी कि वे हर भावना को अपनी आवाज़ में जीवंत कर देते थे। यही कारण है कि रोमांटिक गीत हो, मस्ती भरे नगमे या फिर दर्द से भरे गीत, हर अंदाज में उन्हें श्रोताओं का भरपूर प्यार मिला।
1: मस्ताना प्यार मेरा दीवाना।

श्रोताओं, किशोर कुमार केवल एक गायक ही नहीं थे, उन्होंने अनेक फिल्मों में अभिनय किया, संगीत भी दिया और फिल्म निर्माण तथा निर्देशन में भी अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी सहज अदाकारी और स्वाभाविक हास्यबोध ने उन्हें एक बहुमुखी कलाकार के रूप में स्थापित किया।

श्रोताओं, अपने लंबे फिल्मी सफर में किशोर कुमार ने हजारों गीत गाए। हिंदी के अलावा उन्होंने बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया, असमिया और कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा।

श्रोताओं, किशोर कुमार को उनके शानदार गायन के लिए 8 फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो अपने समय का एक उल्लेखनीय रिकॉर्ड था। आज भी उनकी आवाज़ नई पीढ़ी के लिए उतनी ही लोकप्रिय है जितनी अपने दौर में थी।

13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। संयोग देखिए कि वे हमेशा अपने जन्म स्थान खंडवा से गहरा लगाव रखते थे और अक्सर कहा करते थे, जीवन के अंत में वहीं लौटना चाहते हैं। उनकी आवाज़ आज भी हर संगीत प्रेमी के दिल में जीवित है। और अब आज अब की प्रस्तुति का अंतिम गीत।

श्रोताओं, इन्हीं मधुर सुरों के साथ कार्यक्रम एक ही कलाकार यहीं संपन्न होता है। किशोर कुमार जी का संगीत समय की सीमाओं से परे है। उनकी आवाज आज भी हर पीढ़ी को मुस्कुराना, गुनगुनाना और जीवन को खुले दिल से जीना सिखाती है। इसी उम्मीद के साथ कि आज की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी, अब मैं श्रीविद्या इस कार्यक्रम से इजाजत लेना चाहती हूँ। नमस्कार। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए एक सूचना। क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल की शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का ये अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। सूचना समाप्त हुई।

0: सीमा, सीमा
1: उठो।
2: क्या हुआ?
0: चेकअप के लिए जाना है ना।
2: सोने दो ना।
0: उठो।
2: अगले हफ्ते चल पड़ते, थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा।
3: गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके।
4: समय का मोल
5: HIV पे कंट्रोल।
3: गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവിൽ 438.6 meter അഥവാ 684 kHz-ൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर गतिरोध के कारण आज बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। श्री राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी और हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर किए जा रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की और सदन की कार्यवाही जारी रखने का आग्रह किया, लेकिन गतिरोध जारी रहने पर सदन को पहले 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
1: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर

0: से जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखा भाई रबारी और मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। कर्नाटक में आज शाम लोकभवन में 20 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। डीके शिवकुमार ने 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके अलावा 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। आज 20 मंत्रियों के शामिल होने पर मंत्रिमंडल की अधिकतम क्षमता 34 हो जाएगी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में समीर राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। संसद के दोनों सदनों ने भी आज राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में उत्कलमणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। गोप बंधु दास ओडिशा के एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ओडिया दैनिक द समाज की भी स्थापना की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. amid opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, Minister of Statistics and Program Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. The bill seeks to provide for a comprehensive statutory framework to the Indian Statistical Institute to excel as a globally recognized center in statistical sciences and allied fields. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. It aims to provide for law relating to evidence with respect to bankers' books and align it with contemporary digital banking practices. The opposition members came to the well demanding Union Home Minister Amit Shah's reply over the alleged police action during students' protest over the NEET issue. The presiding officer urged the members to go back to their seats. As the pandemonium continued, the Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. The Rajya Sabha has also been adjourned till 2 p.m. over the same issue. When the upper house assembled at 11 a.m., Chairman C.P. Radhakrishnan congratulated Team India for its outstanding performance at the Commonwealth Games held at Glasgow.
2: India secured an impressive fourth position in the Commonwealth Games medal tally, winning 39 medals overall. Scripted history by registering their best ever performance at the Commonwealth Para Games. The remarkable achievement has brought immense pride and honor to the nation and bear testimony to the growing excellence of Indian sportspersons.
1: Union Minister Sanjay Seth and an MP from Jharkhand has alleged serious irregularities in the recruitment process for the Jharkhand Public Service Commission examination, claiming that deserving

0: और और दूसरी बार फिर आएगा, होगी शांति चारों ओर,
1: होगी शांति चारों ओर।
0: और तीसरी बार, होगी शांति चारों ओर एक दिन,
1: होगी शांति चारों ओर एक दिन।
0: हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास,
1: पूरा है विश्वास।
0: होगी शांति चारों ओर एक दिन,
1: होगी शांति चारों ओर एक दिन।
0: अब दूसरा अंतरा लिखिए, हम चलेंगे साथ साथ,
1: हम चलेंगे साथ साथ।
0: डाल हाथों में हाथ,
1: डाल हाथों में हाथ। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन।
0: हो मन में है विश्वास,
1: हो मन में है विश्वास।
0: पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन,
1: हम चलेंगे साथ साथ एक दिन।
0: अब तीसरा अंतरा लिखिए, नहीं डर किसी का आज,
1: नहीं डर किसी का आज।
0: नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन,
1: नहीं डर किसी का आज के दिन।
0: हो मन में है विश्वास,
1: हो मन में है विश्वास।
0: पूरा है विश्वास,
1: पूरा है विश्वास।
0: नहीं डर किसी का आज के दिन, और इसके बाद होंगे कामयाब आ जाएगा। तो लफ्ज लिख लिए ना आप सबने?
1: यस सर।
0: अच्छा, इसकी धुन जो है वो कहरवा ताल में है और इसमें चार मात्रा होती हैं। देखिए कैसे, धागी न दिन क दिन, एक दो तीन चार,
1: एक दो तीन चार,
0: एक दो तीन चार,
1: एक दो तीन चार।
0: और अब इसकी बोल बाट देख लीजिए, इसकी बोल बाट कैसे है।

0: एक दिन।
1: एक दिन।
0: हो हो मन में है विश्वास।
1: हो हो मन में है विश्वास।
0: पूरा है विश्वास।
1: पूरा है विश्वास।
0: हम होंगे कामयाब एक दिन।
1: हम होंगे कामयाब एक दिन।
0: इसी तरह से बच्चों इसके तीनों अंतरों की बोल बांट रहेगी। अब इसको गाने में हम लोग सिखाएंगे। तो नलिनी जी पहले आप बताइए कि इसकी धुन कौन से स्वर से है।
2: इस गाने की धुन पांचवें काले से है।
0: बच्चों पांचवें काले से गाना है, कौन से स्वर से?
1: पांचवें काले से।
0: अच्छा अब सा दीजिए।

0: तो ये तो बच्चों इसकी स्थाई हो गई। अब पहला अंतरा सीखेंगे। पहला अंतरा क्या है इसका जरा बताइए।
1: होगी शांति चारों ओर।
0: और ये धुन इसकी वही है जो होंगे कामयाब की है, लेकिन इसको सम के दो मात्रा बाद गाना है। कैसे? एक दो तीन चार, एक दो। होगी शांति

0: तो बच्चों ये पहला अंतरा हो गया, आप दूसरे अंतरे के बोल बताइए क्या है।
1: हम चलेंगे साथ साथ।
0: और ये भी सम के दो मात्रा बाद शुरू होता है, तो नलिनी जी आप सिखाइए। एक दो तीन चार।

0: तो ये दूसरा अंतर आपको याद हो गया। अब तीसरे अंतरे के बोल बताइए क्या है।
1: नहीं कर किसी का आज।
0: इसकी धुन भी पहले अंतरे के समान है, लेकिन ये दो मात्रा से नहीं शुरू होगा, ये सम के तीन मात्रा बाद शुरू होगा। कैसे? एक दो तीन चार, एक दो तीन नहीं डर, एक दो तीन, एक दो तीन नहीं।

तो ये तीसरा अंतरा भी आपको याद हो गया। इसके बाद होंगे कामयाब आपने गाना है और आखिर में तीन बार लाइन रिपीट करनी है। हम बताते हैं कैसे। पहले आप होंगे कामयाब गाइए, 1 2 3 4।

तो ये तो बच्चों गाना आपको याद हो गया। एक बात और है, सबसे शुरू में गाने से पहले थोड़ा सा आलाप करना है और उसकी सरगम है पा धा रे ग और चार चार मात्रा करना है। हम बताते हैं कैसे।

0: तो ये गाना आपको पूरा याद हो गया?
1: Yes, sir.
0: अब शुरू से आलाप से और आखिर तक पूरा गाना आप गाएंगे। रेडी? 1, 2, 3, 4.

0: तो बच्चों आपने बहुत अच्छा गाया, अब घर जाके इसको खूब प्रैक्टिस करना तो आपको अच्छी तरह से ये गाना याद हो जाएगा। अच्छा नमस्कार।
1: अभी आप समूह गान शिक्षा का कार्यक्रम आओ हिलमिल गाए सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी दोस्त श्री विद्या। श्रोताओं इस कार्यक्रम में आपके ही द्वारा चुने गए गीतों की मनमोहक प्रस्तुति होती है। आपको करना बस इतना है कि अपने मनपसंद गीत का नाम, फिल्म का नाम और अपना पता लिखकर हमें व्हाट्सएप करना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9474234000। तो आइए बिना देर किए सुनते हैं पहला गीत। श्रोताओं कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म बेवफा से। आवाजें हैं सोनू निगम और साथियों की। इस गीत के लिए हमें फरमाइश आई है स्कूल लाइन से पूर्णिमा, सरिता और नीलम का।

अगला गीत पसंद करने वाले श्रोतागण हैं दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, साइमा नवाज, हसन बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, चाहत और सादिया। ये सुनना चाहते हैं सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत।

आरती फिल्म का गीत अभी आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता थे नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला और विशाल नावकर तथा मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायडे और आशीष, और अब तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समायरा आजमीन गुड़िया। ये सारे सुनना चाहते हैं फिल्म राजा बाबू का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए फिल्म उपहार का एक गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने। और इस गीत के लिए हमें फरमाइश आई है भीड़ शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, जयश्री, अंजलि, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय, पीबी कुलथे।

श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए एक सूचना। क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल की शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50

1,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का ये अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, यहीं पर समाप्त होता है आज का ये कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। आपके प्यार और भागीदारी से ही ये कार्यक्रम इतना खास बनता है। याद रखिए, हर दिन हर घड़ी आपके पसंदीदा गीत हम तक पहुंच सकते हैं। बस व्हाट्सएप कीजिए 9474234000 पर। कल फिर इसी समय दोपहर 1:30 पर मुलाकात होगी नए गीतों और नई पसंद के साथ। और अब दीजिए अपनी दोस्त श्री विद्या को इस कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। पहले अंग्रेजी और उसके बाद हिंदी में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Government has announced financial assistance for damaged houses and crop losses as restoration gathers pace.
1: The flood situation in Odisha continues to improve as water has receded in all major rivers and their tributaries, including the Mahanadi. With inflow into the Hirakud Reservoir declining, authorities have closed 3 spillway gates, reducing flood water discharge to 19 gates from 22 earlier. The state government has begun a detailed assessment of flood damage and announced financial assistance of up to 1,20,000 rupees for families whose houses were completely destroyed. Compensation has also been announced for partially damaged houses and crop loss. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: News just in, the Lok Sabha has been adjourned till 11 a.m. tomorrow. The Indian Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim for today. Heavy rainfall is also expected tomorrow over Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Uttar Pradesh. President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi have congratulated the Indian contingent on its impressive performance at the Glasgow Commonwealth Games by bringing 39 medals. President Murmu expressed confidence that the sportspersons of the country will bring greater glory to the nation in the future international events. We have news just in. The Lok Sabha has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament proceedings disrupted following opposition protest over several issues. Counting of votes for by-elections in 3 assembly constituencies of Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh underway. Delhi court acquits former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh in sexual harassment case filed by some women wrestlers. India achieves over 5 lakh Aadhaar verified organ donation pledges, stands third globally in number of organ transplants. US and Iran expected to hold next round of peace talks today. And Weather Department forecasts heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim for today. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भीखाभाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों

0: के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बहीखातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
1: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
1: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
2: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।

0: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने एक साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
1: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोकभवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटका में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा GS पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरल,

0: लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धान और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्यौहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5,00,000 से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांतिवार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया गया है कि तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। सभी से सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा गया है। कल शाम तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर भारी वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:32 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
1: 100.9 आपका हम सफर।
2: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी दोस्त श्री विद्या। श्रोताओं, आज फिर हम स्टूडियो से सीधे अपने श्रोताओं को फ़ोन करेंगे, उनसे करेंगे बातें और सुनवाएंगे उनको उनकी पसंद के गीत। श्रोताओं, रिश्ते आवाज़ों और एहसासों से बनते हैं, दूरियाँ चाहे जितनी हों अपने हमेशा दिल में बसते हैं। एक छोटी सी कॉल भी मुस्कान दे जाती है, यही तो ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सौगात कहलाती है। तो मुस्कुराइए, क्योंकि अगले कुछ पलों में शायद हमारी घंटी आपको फ़ोन पर भी बज जाए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले दोस्त के साथ। हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो जी, नमस्कार मैडम।
0: जी नमस्कार, हमारी बात हो रही है?
1: लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ मैडम, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से।
0: लोकेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बता दीजिए कि आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: गाना सुनना है मुझे मैडम, ये याराना फिल्म का, इसमें एक सॉन्ग है किशोर कुमार जी की आवाज में, भोले ओ भोले।
0: जरूर सुनवाएंगे, भोले वो भोले गाना याराना फिल्म से है ये।
1: हाँ, याराना फिल्म का।
0: तो कैसे हैं आप?
1: बस बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और आपके प्रोग्राम से करीब मैं 3-4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं तो काफी समय से मतलब आपके प्रोग्राम को सुन रहा हूँ। पहले मैं DTH के माध्यम से सुनता था, अब तो ये प्रसार भारती मोबाइल ऐप आ गया है, इसमें सुनता हूँ। अच्छा प्रोग्राम रहता है, हेलो डियर फ्रेंड है और हेलो फ्रेंड्स आता है, ये शुक्रवार को भी आता है, व्हाट्सएप चॉइस आते हैं, सभी प्रोग्राम मतलब मिले जुले प्रोग्राम आपके यहाँ के सुनते हैं हम मैडम।
0: अच्छा, पिछले 4 सालों से आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम।
1: जी जी जी मैडम।
0: तो और आप ये रहते कहाँ हैं, क्या बताया आपने?
1: उज्जैन, उज्जैन महाकालेश्वर जी की नगरी है ये, उज्जैन ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर
0: जी।
1: और अभी ये श्रावण मास चल रहा है तो आज महाकालेश्वर जी की सवारी निकाली जाएगी, और अभी पूरे श्रावण मास में मतलब हर हर सोमवार को सवारी निकलेगी यहाँ पर, और बहुत से पर्यटन के दर्शन करने के लिए उज्जैन आते हैं।
0: बहुत सारे पर्यटक आते हैं वहाँ?
1: हाँ जी जी, पर्यटक आते हैं। और ये तो ज्योतिर्लिंग है ना प्रमुख उज्जैन में महाकालेश्वर जी का, तो यहाँ पर मतलब पूरे साल ही मतलब पर्यटन आना जाना सभी तीर्थ यात्रियों का लगा रहता है।
0: जी जी, आप कब से हैं उज्जैन में?
1: मैडम जी, मैं तो उज्जैन में करीब 30 साल से ज्यादा हो गए हैं, हमें रहते रहे हैं यहाँ पे, मतलब बचपन से ही यहीं पे रह रहे हैं। और अच्छा मतलब धीरे धीरे ये उज्जैन का काफी विकास भी हुआ है, और अभी ये जो महाकाल कॉरिडोर बना है ना, महाकाल लोकवन
0: जी,
1: जब से उज्जैन के पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिला है
0: जी,
1: और करीब 1-2 लाख यात्री प्रतिदिन आते हैं और जाते हैं, मतलब आना जाना लगा रहता है, पूरे साल ही लगा रहता है, मतलब धर्ममयी नगरी है
0: जी,
1: और
0: जी।
1: सभी धर्म और समाज के सब प्रेम और स्नेह से रहते हैं, किसी भी बात का कोई दिक्कत नहीं रहती है। हाँ जी, और अभी ये जो श्रावण मास की यात्रा निकलेगी ना, जो हमारे बाहर से जो यात्री आते हैं, जो ये कावड़ यात्रा लेकर
0: जी,
1: तो उनके भी रहने और खाने पीने की व्यवस्था यहाँ सभी नागरिक करते हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कांवड़ यात्रा से जुड़ी इतनी सुंदर जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत आभार।
1: कुछ मित्र हैं मैडम हमारे जो हम हमेशा प्रोग्राम सुनते हैं, शारदा प्रसाद जी है, धर्मवीर जी है दिल्ली से, दिलीप पाहुजा जी है, अनुप कुमार भट्टाचार्य जी है, रामशरण विश्वकर्मा जी है, सुमित रॉय जी है भागलपुर से, और राजेश्वर सोनू जी और तुकाराम जी और गंगाधर जी है, और हेलो फरमा एकता के ग्रुप के तमाम मित्र
0: जी। लोकेंद्र वर्मा जी, कांवड़ यात्रा की पावन झलक हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए फिल्म याराना का ये गीत
1: जी।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: जी मैडम,
0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, हमारी बात हो रही है श्री विजयपुरम की पाकिजा जी से।
1: जी मैडम, थैंक
0: पाकिजा जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: यू मैडम।
0: सबसे पहले तो गाना बता दीजिए आप।
1: आखिरी बहार से गाना मैडम, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा नहीं मेरा दाया होता।
0: जी, बहुत ही अच्छा गीत चुना है आपने। पाकिजा जी, कुछ बताइए अपने बारे में, क्या कब पहली बार जुड़ रही है क्या हमारे साथ?
1: घर का काम, पेड़ लगाना,
0: इससे
1: ये सब
0: पहले
1: हमको
0: जुड़
1: बहुत
0: चुकी
1: पसंद
0: हैं
1: है।
0: क्या हमारे साथ?
1: पहले बहुत मैडम, बहुत दिन तक बता फोन करी मेरे को, 1 साल होने वाला मैडम।
0: अच्छा,
1: हम रोज अवसर रखती कि आ जाएगा आ जाएगा, टाइम पा रहे जब समझ बता नहीं आएगा।
0: तो आपको फोन नहीं आता था, आप प्रोग्राम तो सुनती थी ना?
1: हाँ बराबर सुनी, कभी मिस नहीं करते मैडम, बराबर सुनती हूँ मैम। एक बात है, मैं आपको तो बोलने मांगती,
0: जी जरूर
1: आप
0: बोलिए।
1: लोग खाली नए नए गाना चलाते, पुराना गाना क्यों नहीं चलाते?
0: पुराने गानों गीतों का भी अलग कार्यक्रम होता है पाकिस्तान जी।
1: दिल्ली से मैडम धर्मवीर भाई सद्दी बोले बात, फिर आप लोग बात का तो नहीं, खाली नए नए गाना मैडम। वो नया गाना करना कहाँ सी रहे कहाँ पाओ कुछ पता ही नहीं चलता मैम। पुराना गाना
0: नहीं, हर गाने में अपनी अपनी खूबसूरती होती
1: था
0: है, ऐसी ऐसी बात नहीं है। और पुराने गीतों का भी अपना अलग कार्यक्रम है, नए गीतों का भी है। फिर जैसे भी, और सबको अपनी अपनी पसंद का अगर गीत सुनना है तो फरमाइश प्रोग्राम्स उसी के लिए होते हैं।
1: पुराना
0: ठीक
1: भी तो
0: है,
1: है ना
0: हम
1: मैडम,
0: इस बारे में ध्यान देंगे।
1: आगे
0: और
1: या आप मेरे बात आगे पहुँचाइए।
0: जी
1: अब मैं
0: जरूर
1: नाम
0: जरूर।
1: देगी थोड़ा,
0: हाँ जी
1: मेरे साथ एक नसीम बेगम,
0: जी
1: माजदा बेगम और नादिरा बेगम,

0: जरूर सुनिए। आप ये सारे आपके मित्र हैं, सहेलियां हैं
1: हाँ जी, मेरा सही है।
0: जी, जरूर सुनिए अपनी सहेलियों के साथ ये गीत।
1: थैंक यू।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार मैम
0: नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए।
1: जी मैम, हम धेमाजी असम जुनाई मैसेज सपोरी से बिमल बसुमतारी बोल रहा हूँ मैम।
0: बिमल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप असम के रहने वाले हैं?
1: जी मैम, बहुत दिन का बाद आज फोन मिला है, बहुत अच्छा लगा मैम।
0: जी, हमें भी खुशी हुई आपसे बातें हुई हो रही है अभी। और गाना बता दीजिए बिमल जी।
1: जी मैम, हमको सुनना है मोहरा फिल्म का टिपी टिपी पानी बरसा, ये गीत सुनना है।
0: जी, मोहरा फिल्म का टिप टिप बरसा पानी।
1: जी मैम जी,
0: जी, आप आपने कहा आप असम के रहने वाले हैं, क्या स्थिति है अभी वहाँ पे? हालात क्या पहले से बेहतर हो गए हैं?
1: जी मैम, हम लोग का जो अभी न्यूज़ में निकल रहा है, थोड़ा पानी हो रहा है ना, ये जोरहाट ये बगरा, ये हम लोग का से थोड़ा दूर में पड़ता है। अभी भी थोड़ा हालात इतना ठीक नहीं हुआ है, अभी भी
0: आप जहाँ
1: पानी
0: रहते हैं वहाँ
1: का।
0: उस इलाके में?
1: जी मैम, हम लोग का जो इधर इलाका में है, लेकिन हम लोग का इधर पानी नहीं हुआ है, अच्छा
0: जी,
1: है।
0: तो ऐसे समय में आप सुनने वाले श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जी मैम, हम ये बोलना चाहते हैं कि जो नदी किनारे में रहता है, फिर हम लोग का भी नदी किनारे में रहते है, इसलिए अभी वर्षा का मौसम है, इसलिए थोड़ा अच्छा से रहना चाहिए सबको भी। जैसे कब आ सकता है पानी, हम लोग भरोसा नहीं है। हम लोग का भी जो मैम है, ये नदी का बीच में पड़ता है, इसलिए थोड़ा अच्छा से हम लोग ध्यान करके रहता
0: देख
1: हूँ
0: के
1: मैम।
0: सावधानी के साथ रहें।
1: जी,
0: तो आपने मोहरा फिल्म का गीत सुनवाने को कहा है, तो सुनवा रहे हैं
1: जी
0: बिमल
1: मैम,
0: जी।
1: हम दोस्त लोग के लिए हम डेडिकेट करना चाहता हूँ मैम।
0: जी जरूर।
1: हम लोग का सबसे पहले है अम्बल बसुंतरी, फाइकन मुंडा, रमेश पात्र, और है दिवासी हजारिका, करण द्वारा, और है पूरन वर्मा है, राकेश है, गोल्डी है, शिवा लोहार है, रमेश प्रजापति है, भगवान सिंह परमार, प्रेम सिंह सुसुदिया, और जितना तमाम सुनने वाला सारे लोग को डिलेक्ट करना चाहता हूँ, और गागे राभा और अरुण ब्रह्म, सबके
0: जी,
1: लिए भी डिलेक्ट करना चाहता
0: तो
1: हूँ
0: आप
1: मैं।
0: अपने सभी मित्रों परिवार वालों के साथ मिलकर सुनिए ये गीत।

0: श्रोताओं, इस समय आप 100.9 विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड। श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: हेलो डियर फ्रेंड, गौरी शंकर जी से बात हो रही है हमारी?
3: हाँ, बोल रहा हूँ सर, गौरी शंकर बोल रहा हूँ।
2: गौरी शंकर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं, हमारे श्रोताओं को भी बताइए।
3: भीलवाड़ा, राजस्थान।
2: तो कार्यक्रम में स्वागत है आपका, और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
3: सुनाओ सर, साजन फिल्म का है, रेशम की डोरी, मनोज कुमार की फिल्म।
2: जी, साजन की रेशम की डोरी। जी, तो फिर सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद का गीत। तो बताइए कि ये वहाँ आपके यहाँ मौसम कैसा है?
3: मौसम बारिश आ रही है जी, तो मौसम बढ़िया चल रहा है, मंगल।
2: अभी भी बारिश हो रही है?
3: हाँ, ये भीलवाड़ा अजमेर चित्तौड़ के बीच में है, और मेरा भाई जो है ना उसके पास में है।
2: तो बारिश के बाद आपका शहर और ज्यादा खूबसूरत हो गया होगा?
3: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है।
2: ठीक है, और बताइए कि आपके नजरिए से वहाँ क्या खास है?
3: वहाँ ब्रेज तो पास में चित्तौड़ हमारे, मीरा भाई का ये ससुराल है वहाँ पे, मीरा भाई का नाम आता है ना, वो है भीलवाड़ा वस्त्र निधि कपड़ों की।
2: आपका जाना होता है?
3: हाँ, पास में हमारे 40 किलोमीटर है।
2: जी, चित्तौड़गढ़। और क्या है पास में घूमने वाली जगह? यही है।
3: हाँ, उदयपुर भी हमारे पास पड़ता है, नदी उदयपुर।
2: तो कभी जा पाते हैं आप?
3: हाँ बिल्कुल, हमारे ऑफिस वहीं पे गए हम लोग, वहीं रिटायर, वहीं से
2: आप रिटायर हो गए हैं, रिटायरमेंट हो चुकी है आपकी। तो अभी क्या करते हैं घर पे आप?
3: घर पे देखो सर, रामचरितमानस सुनते हैं। तो
2: घर पे कौन कौन है? घर पे कौन कौन है?
3: घर पे बच्चे हैं, वो तो सब शादियाँ हो गई उनकी, दो ही तो हो गए, हम दोनों ही रहते भी, पति पत्नी
2: जी,
3: चार बच्चियाँ, वो सब अपने सेट है अपने के लिए।
2: जी जी, आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करिए, फिर बच्चों के पास जाते आते रहिए, खुश रहिए। अभी सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का गीत, किसी को डेडिकेट करना है आप?
3: हाँ, हमारे नाना लाल जी हैं, मित्र सत्यनारायण जी आडोले जी हैं, और कुछ मित्र और हमारे रामेश्वर जी तारा शहर आदिया, तो वो सब सुनेंगे।
2: ठीक है, सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत, फिल्म है साजन।

0: हेलो डियर फ्रेंड,
1: हेलो डियर फ्रेंड
0: नमस्कार। हमारी बात हो रही है भाई कौन मुंडा जी से।
1: जी, नमस्कार। मैं जिला चराइदेव तहसील सोनारी गांव रंगापत्थर आसाम से भाईकुन मुंडा बोल रहा हूँ
0: जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी। फिल्म का नाम है जुर्म और उसमें गाना है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा, ऐसे करके
0: जी,
1: गाना है
0: बहुत ही
1: जी।
0: सुंदर गीत चुना है आपने। तो
1: और
0: आपके लिए कौन रहता है ऐसे मुश्किल समय में खड़े रहने के लिए?
1: मेरे दोस्त लोग रहते हैं ना दीदी, और आप
0: अच्छा,
1: लोगों को तो
0: बहुत
1: पता ही
0: अच्छे
1: है
0: दोस्त हैं
1: फिलहाल।
0: जी। बताइए, क्या पता है हमें?
1: अभी तो आसाम में मतलब बाढ़ आया है ना,
0: हाँ हाँ जी, हाँ जी,
1: अपना जो
0: हाँ।
1: जिला
0: आप
1: चराइदेव
0: जहाँ रहते
1: यहाँ
0: हैं
1: में भी,
0: वहाँ के हालात
1: हाँ
0: कैसे हैं?
1: दीदी, अभी तो फिलहाल ठीक है, लेकिन बहुत जान माल नुकसान ये हुआ है। अभी सरकार
0: तो आप काम पे जा पा रहे हैं?
1: लगातार काम,
0: काम पे जा पा रहे हैं आप?
1: दीदी अभी तो काम पे नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन वो जो हम जो काम कर रहे थे ना,
0: जी,
1: वो
0: क्या
1: सड़क जो
0: किस
1: बन रहा
0: काम
1: था
0: से?
1: वो,
0: काम सड़क बनाने का काम?
1: हाँ जी, मैं सर्वे काम कर रहा था, सर्वे का वो हाईवे
0: तो कब
1: जो
0: से काम
1: सिसागर
0: बंद
1: जो रोड
0: पड़ा है
1: बन रहा था,
0: आपका?
1: अभी 19 जुलाई से तो बंद ही पड़ा है पूरा
0: 19 जुलाई से बहुत
1: अभी
0: दिन हो गए।
1: हाँ।
0: अच्छा, तो फिर कब ये हालात कब तक ठीक होंगे? आप लोग क्या करते हैं सुरक्षा के लिए? कैसे क्या करते हैं आप?
1: दीदी
0: सावधानी
1: अभी
0: कैसे बरत के
1: तो
0: रहते हैं?
1: मेरे गांव में तो उतना नुकसान नहीं हुआ है, और इतना मतलब पानी भी बाढ़ भी नहीं आया है, और जो ज्यादातर नुकसान हुआ है शिवसागर और नाजीरा, ये जो संतक बिहपुर ये करके जगह, इसमें तो बहुत नुकसान हुआ है दीदी।
0: जी, आशा करते हैं वहाँ जल्द से सब कुछ ठीक हो जाए।
1: मैं भी भगवान से ही प्रार्थना करूंगा दीदी कि जल्द से जल्द

0: ठीक हो जाए, हालत सुधर जाए।
1: जी, तो आज ये गाना आप किन को डेडिकेट करना चाहते हैं?
0: हाँ, दोस्तों के नाम लेना चाहूँगा, अमल बसुमतारी, विमल बसुमतारी, जोगेंद्र रोंगपी, रमेश पात्र, अरुण पात्र, लाकी, और हेलो फरमाइश एक्टर ग्रुप से हैं लोकेंद्र वर्मा जी, गंगाधर सावनकर जी, गौतम राय बोले जी, और बहुत सारे जो ग्रुप में है सभी के लिए ये गाना डेडिकेट रहेगा, और आकाशवाणी श्री विजयपुरम के सभी अनाउंसर्स के लिए डेडिकेट रहेगा।
1: जी, अपने सभी मित्रों के साथ सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।
0: जी, बहुत बहुत।

0: हेलो डियर फ्रेंड,
1: जी डियर फ्रेंड
0: छाया प्रशांत जी से बात हो रही है हमारी।
1: जी हाँ
0: आप हैं श्री विजयपुरम की? और श्री
1: जी
0: विजयपुरम में कहाँ रहती हैं आप?
1: सिद्धिकाट में रहती हूँ।
0: जी कहाँ पे?
1: सिद्धिकाट में
0: सिप्पी घाट में। तो
1: जी
0: क्या हमारी इस कार्यक्रम से आप पहली बार जुड़ रही हैं?
1: जी मैं पहली बार जुड़ रही हूँ ये कार्यक्रम पे। बहुत अच्छा कार्यक्रम है।
0: जी, तो आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: जी फिल्म है हमारी अधूरी कहानी और शशि भोसले है जो सिंगर है उसमें। गाने के बोल है मैं जानती ये वार तू हर जीत भी हार तू कीमत हो कोई तुझे बेंद हाँ प्यार तू वही गाने के बोल है।
0: आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाएंगी। आपने बताया कि आप पहली बार जुड़ रही हैं। आप रेडियो में और कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं आप?
1: सबसे ज्यादा तो यही जहाँ पे आप लोग उधर से हमें कॉल कर रहे हैं वही प्रोग्राम अच्छा लगता है। और वही यू ही गाते रहो मैं कभी कभी नया गाना आप लोग सुनाते तो वही भी सुनती हूँ।
0: और आप क्या
1: और
0: करती
1: ज्यादा
0: हैं छाया जी?
1: जी फिलहाल अभी हम करते हैं मेरा काउंसलिंग है कॉलेज का 11।

0: को टीचर्स ट्रेनिंग का।
1: अच्छा, काउंसलिंग
0: जी
1: है आपका। आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है हम तक। चलिए, सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल। कार्यक्रम में स्वागत है। आप हैं शिवा लोहट जी।
1: जी मैम बिल्कुल, मैं एमपी विदिशा से शिवा लोहट जी बात कर रहा हूँ आपसे।
0: जी तो सबसे पहले बता दीजिए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, समय की कमी है। आप
1: मैम
0: हमारे लास्ट कॉलर हैं।
1: गाने के बोल रहेंगे, दिल में आग लगाए, सावन का महीना, किशोर कुमार जी का। और मैम कुछ कॉलर यहाँ पे हर हफ्ते सुनाई दे रहे हैं, कृपया करके आप अपने कार्यक्रम की मर्यादा को रखते हुए ऐसा रिकॉर्ड रखें और ऐसे लोगों को आने से रोकें, चाहे वो कितने ही बड़े वाले होता हो। यहाँ पे सबको
0: जरूर, आपने जो कहा इस बारे में जरूर ध्यान देंगे, ध्यान दे रहे हैं। अभी सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का गीत, समय की कमी है। शिवाजी।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हमसफर।
2: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 3:31 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

श्रोताओं, जिंदगी हर रोज हमें दो तोहफे देती है, एक नई सुबह और एक दूसरा एक नया मौका। बीती हुई बातों को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन आने वाले पल को खूबसूरत बनाना जरूर हमारे हाथ में होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रीविद्या और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम यूं ही गाते रहो में। दोस्तों, जिंदगी तब सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है जब हम छोटी छोटी खुशियों में मुस्कुराना सीख लेते हैं। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है, बस उसे देखने की नज़र होनी चाहिए। तो आइए आज संगीत के साथ कुछ ऐसी बातें करें जो दिल को सुकून दे, मन में नई उम्मीद जगाएं और चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाएं।

श्रोताओं, कहते हैं मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है। रास्ते में मिलने वाले लोग, छोटी छोटी खुशियां और यादें, यही तो ज़िंदगी की असली दौलत है। इसलिए हर पल को जी भर कर जीना चाहिए।

श्रोताओं, क्या कभी आपने सुबह की ठंडी हवा महसूस की है या बारिश की पहली बूंदों को हथेली पर थामा है? खुशियां अक्सर हमारे आसपास ही होती है, बस हम उन्हें ढूंढना भूल जाते हैं।

श्रोताओं, हर बात को दिल पर लेना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। जो बीत गया उसे जाने दीजिए और जो आने वाला है उसका मुस्कुराकर स्वागत कीजिए। जिंदगी में कभी कभी खुशी आती है, कभी गम, लेकिन दोनों हमेशा साथ नहीं रहते। हर मुश्किल के बाद एक आसान रास्ता भी जरूर आता है, इसलिए उम्मीद का दीपक हमेशा जलाए रखिए।

श्रोताओं, अगर दुनिया की भाग दौड़ से कभी मन थक जाए तो कुछ पल अपने लिए निकालिए, अपनों के साथ बैठिए, खुलकर हंसिए, प्रकृति के करीब जाइए। सुकून बाहर नहीं, हमारे अपने दिल में ही होता है।

श्रोताओं, हर सुबह ये कहती है कि चाहे कल कैसा भी रहा हो, आज फिर मुस्कुराने की वजह ढूंढो, नए सपने देखो, नई शुरुआत करो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो।

Okay. हंड्रेड पॉइंट नाइन मेगाहर्ट्स पर यह है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारी स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

ngamine te khangi tin ka ga ne te ka gnya kennedy tame holo.

अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में हेमा सरदेसाई की आवाज में कुछ गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:40 में है। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 4:45 पर सुनिए फिल्म गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:00। 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में सुनिए युववाणी कार्यक्रम। कृषि जगत कार्यक्रम में संध्या 6:00 आप सुनेंगे डॉक्टर MS कुंडू के साथ की गई बातचीत। विषय होगा बकरियों के लिए संतुलित आहार। शाम 6:30 पर सुनिए पॉप मसाला कार्यक्रम। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं आप सुन पाएंगे संध्या 7:15 पर। संध्या 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। युववाणी कार्यक्रम के तहत संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे मैथिली शरण गुप्त की जयंती पर चर्चा, तत्पश्चात पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादें जिसमें शकील बदायूनी पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम होगा। रात 8:15 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत, रोजगार समाचार और गौरव गान का समय रहेगा रात 8:30 और रात्रि 10:00 FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन पाएंगे छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8:00 संसद समीक्षा, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम और रात्रि 10:00 संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल के कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर। सुबह 5:30 पर सुनिए अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 5:55 जिसमें जानकारी का विषय होगा फास्फोरक उर्वरकों का प्रबंधन। सुबह 6:10 पर बताया जाएगा जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। सवेरे 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा सावन शीर्षक पर। रामचरित मानस गान का समय रहेगा सुबह 6:30। सवेरे 6:40 पर प्रसारित किया जाएगा वतन के गीत कार्यक्रम। मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा सुबह 6:50 पर। सवेरे 7:00 आप सुनेंगे जन सूचनाएं। सुबह 7:15 पर सुनिए फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर सवेरे 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के अंतर्गत आप कुछ फिल्मी गानों का आनंद लेंगे। सुबह 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकार होंगे मनहर और जगजीत सिंह। तरानी सुहानी का कार्यक्रम का आनंद लीजिए सुबह 9:00। सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप M बाला मुरली कृष्णन का कर्नाटक शैली में गायन सुनेंगे। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10:00। दिन में 11:00 प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। चित्रगीत कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 11:30। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12:30। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिए गुलाम अली को। आपके नाम फिल्मी पैगाम, फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम होगा दोपहर 1:30 पर। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी और प्राइमरी चैनल पर पहली सभा की समाप्ति के बाद FM 100.9 MHz पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा जिसमें आप नॉन स्टॉप म्यूजिक का आनंद लेंगे। और दोपहर बाद 3:30 पर

श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

अभियां आशा भोसले, शब्बीर कुमार और प्रयागराज का गाया कुली फिल्म का गीत सुन रहे थे। बोल थे आनंद बख्शी के तथा धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार आनंद बख्शी का लिखा आन मिलो सजना फिल्म का ये गीत, और इस गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर ने।

आइए अब सुनते हैं सुहाग फिल्म में आनंद बख्शी का लिखा ये गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की, तथा इस गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह के गाए सुहाग फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं और प्रस्तुत है तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली वणंगम तमिल अमुदम वणक्कम नेयर्गले।

எல்லாமே அறிந்தவன் புரிந்தவன்.

Viene allá.

अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम।

0: आगे बढ़ने में है। कठिनाइयाँ हमें रोकने नहीं बल्कि और मजबूत बनाने आती है। इसलिए हर नई सुबह मुस्कान, विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ शुरू करें, क्योंकि अच्छे कर्म ही हमारी सबसे बड़ी पहचान बनते हैं। तो आज के इस विचार को साथ लिए चलिए अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। साथियों, आज का प्रश्न है, एक्टिवेटेड कार्बन नारियल के किस भाग से बनाया जाता है? प्रश्न मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ, एक्टिवेटेड कार्बन नारियल के किस भाग से बनाया जाता है? आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहिए, कार्यक्रम के दौरान हम इसका उत्तर आपको अवश्य बताएंगे। और अब चलिए साथियों, सबसे पहले हम आपको सुनवा देते हैं आज की बातचीत, जिसका विषय है बकरियों के लिए संतुलित आहार। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर MS कुंडू जी।
1: डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: आपको भी स्वागत, किसान भाई बंधु को भी स्वागत है इस प्रोग्राम में।
1: डॉक्टर साहब, जहां तक बकरियों के लिए आहार का सवाल है, किसान अगर जब गाय पालता है तब भी आहार पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देता है, मुर्गी पालन जब थोड़ा व्यावसायिक तरीके से करता है तब भी बहुत ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन बकरियों को थोड़ा सा नजरअंदाज कर देता है। पत्तियां अगर मिल जाता है तो बकरियां खा लेती है, नहीं तो अन्यथा उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो बकरियों के लिए जो संतुलित आहार है वो कितना जरूरी है, कितना अहम है, आप क्या बताना चाहेंगे?
2: आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। ये बकरी जो है आमतौर पर इसको पुराना जमाना में कहा जाता था पोर्स मैन गोट, मतलब जो गरीब आदमी है वो जब गाय खरीद नहीं सकते वो बकरी पालते हैं, उससे थोड़ा बहुत दूध मिल जाता है। हम लोग इसको कहते हैं चाय बनाने भर दूध मिल जाता है। तो सबका ख्याल यही रहता है कि भाई हमने बकरी पाल दिया वो चर के खा जाएगा, कुछ भी चीज खाएगा, उसके बाद वो आगे हमको कुछ ना कुछ फायदा देंगे। इसके लिए लागत भी बहुत ज्यादा लगता नहीं है, इसीलिए किसान भाई इसका ऊपर ज्यादातर सोचते हैं इसको क्या देखभाल करना है। लेकिन आज जो समस्या आ रहा है पशुपालन को लेके, जे इसको हम जीविका का एक स्रोत मान सकते हैं।
1: जी,
2: बकरी साल में 1.5 बार बच्चा देते हैं, मतलब 15 महीने में 2 बार बच्चा देते हैं। तो 2 बार जब बच्चा देते हैं इसको 2-2, 4 बच्चा हो जाता है। और आजकल आप लोग देखे हैं जे बकरा का मीट का कितना ज्यादा लाभ है। लेकिन मैंने जो कहा जे 15 महीना में 2 बार बच्चा देते हैं, ये तब होगा जब उसको संतुलित आहार मिलेगा। सिर्फ हम उसको छोड़ देंगे वो भगवान भरोसा में रहेंगे, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको संतुलित आहार के बिना वो पूरा उसका शरीर का रखरखाव, साथ साथ उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए जो न्यूट्रिएंट का जरूरत होता है उसका कमी पड़ जाता है।
1: गर्भधारण करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है
2: उसका कमी हो जाता है।
1: अच्छा।
2: जिसके कारण कभी कभी ये बात गांव से काफी हम लोग का पास भी आते हैं, डॉक्टर साहब बकरी तो गर्म हुआ था, बकरा भी दिखाया था लेकिन वो पाल नहीं रखा। कारण ये होता है जब बकरी गर्म होता है उस समय में वो अंडा निकालते हैं, वो अंडा इतना कमजोर हो जाता है, वो कमजोर अंडा से फर्टिलाइज होके फिर वो बच्चा पैदा नहीं हो पाता। तो ये सब चीज हम लोग बाहर से खुले आंख में देख नहीं पाते।
1: बिल्कुल,
2: ये चीज को देखने के लिए हम लोग का जो 6 पोषक तत्व है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, नमक और पानी, इसका सबका एक अलग अलग नियम है। इस मात्रा में नहीं मिलेगा तो वो जानवर जिंदा तो रहेगा लेकिन उससे हमको प्रोडक्शन करने के लिए जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा।
1: बिल्कुल, और जैसे कि आप बताए कि लोग परेशान रहते हैं,
2: क्या हो रहा है। बकरी के लिए भी पोषक तत्व में खनिज नमक का जरूरत होता है, जिससे उसका खून बनता है, जिससे उसका एंजाइम्स बनता है, जिसके उससे हार्मोन बनता है, ये सब चीज एक खनिज नमक से बनता है। अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है इसमें काफी बरसात हो रहा है, जिसके कारण मिट्टी में जो भी घास पैदा हो रहा है उसमें पोषक तत्व का बहुत सारे कमियां हो रहा है।
1: जी हाँ, मतलब देखने में घास दिख रहा है लेकिन
2: लेकिन उसको नहीं मिलता है। तो उसी से ये जो छोटे छोटे नुकसान हो रहा है वो किसान को पता नहीं चल पा रहा है। आखिरी में जब वो हीट में आ रहा है उस समय में दिखाई दे रहा है कि हीट में आ रहा है लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो रहा है।
1: बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब जहां तक संतुलित आहार का सवाल है, बकरियों के लिए जैसे कि आप खुद भी बता रहे हैं बकरी पत्ती दे देते हैं, तो वैसे अगर एक संतुलित आहार अगर देना है ताकि वृद्धि अच्छी हो, ग्रोथ उनका अच्छा हो, बच्चे समय पर दें, तो किन किन बातों पर किसान भाई ध्यान?
2: किसान आपने बकरी पत्ती का जो बात

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान साथियों को जोया की ओर से प्यार भरा नमस्कार। किसान साथियों, जीवन में सफलता केवल मंजिल पाने में नहीं, बल्कि हर दिन ईमानदारी, मेहनत और अच्छे विचारों के साथ

0: है, इससे प्रोटीन अच्छा ढंग से मिल जाएगा, उसका प्रोटीन का कमी नहीं होता है। जिसके लिए आप लोग देखे होंगे ये बकरी की बकरा जो हमारा अंडमान में है, बाहर में आमतौर पर 80% उसका चमक, स्किन का जो कालापन है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसमें कभी कभी कमी हो जाता है, विटामिन्स का कमी हो जाता है, मिनरल्स का कमी हो जाता है। ये दोनों चीज खास करके आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा,
1: ऊपर से देना
0: ऊपर
1: होगा।
0: से देना पड़ेगा। और एक चीज होता है, हम लोग जिसको हम लोग का वेटरनरी का भाषा में बोलते हैं फ्लैशिंग,
1: जी
0: जब बच्चा धारण करने का समय होता है उस समय में उसको ज्यादा पोषक तत्व का जरूरत होता है। और सब जानवर का एक खाने का तरीका होता है, जैसे आप बकरी को घास काट के जैसे गाय को देते हैं उसी ढंग में दे दीजिएगा तो वो खाएगा नहीं, उसको चाहिए ऊपर में टांग के देना है, वो गर्दन उठा के उससे नोच नोच के खाएंगे, इससे उसको एक आराम मिलता है।
1: जी
0: दूसरा है, आप उसको दानादार जो दाना देते हैं उसमें उसका गोटा गोटा दाना देता पड़ता है, जैसे चावल देना है चावल को पाउडर बना के नहीं देना है,
1: जी
0: गेहूं देना है तो गेहूं गोटा देना है, चना देना है तो उसको चना देना है, तो क्योंकि उसमें उसका जो अंदर वाला दांत है उससे जब वो तोड़ता है उसमें एक आवाज आता है, उससे उसको थोड़ा सा संतुष्टि मिलता है। यही बात आप गाय को गोटा चावल की धान गेहूं दे दीजिए, देखिएगा उसका गोबर के साथ पूरा निकल के आ जाता है, क्योंकि उसका सिस्टम इसी ढंग का नहीं है जो वो गोटा चीज को हजम करके वो अपना शरीर का पोषक तत्व तो ले पाए। लेकिन बकरी का ऐसी चीज है जो गोटा चीज वो खा जाता है, खा जाने के बाद भी उससे पोषक तत्व तो लेते हैं,
1: बिल्कुल
0: इसी से उसको हम लोग फ्लैशिंग का करने के लिए ये बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। जैसे कि हम दो तीन बकरी पाल रहे हैं घर में, आमतौर पर अंडमान में जो देखा जाता है उसमें हम हर रोज शाम के समय में एक मुठ्ठा चावल भी दे दे, तो जो चावल अपने के लिए बना रहे हैं उससे एक मुठ्ठा चावल उठा लीजिए, उसको सूखा वाला गाय को नहीं बकरी को दे दीजिए, तो उससे फ्लैशिंग का जो कमी हो रहा था वो पूरा हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, ये जो आप फ्लशिंग की बात कह रहे हैं कि अगर इस तरह पोषक तत्व तो ज्यादा देंगे तो एक से अधिक बच्चे होने के चांसेस बढ़
0: चांसेस
1: जाए
0: है,
1: है।
0: क्योंकि आपने देखा होगा बकरी में आमतौर पर दो बच्चा होता है, पहला बार में एक होता है, सेकंड टाइम से दो होता है, कोई कोई बकरी तीन चार भी बच्चा देते हैं, मैंने तो एक बकरी को पांच बच्चा देते हुए भी देखा, लेकिन चार बच्चा देने का जो आम तौर पे है ये करीब करीब टोटल पॉपुलेशन में 5 से 10% पॉपुलेशन में चार बच्चा भी देते हैं।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ये जो फ्लशिंग की बात मैं आपसे पूछ रहा था, अगर किसान भाई जब बकरी गाभिन होती है या गर्मी में जब आती है तो
0: आते
1: उसी
0: हैं
1: समय उस पर अगर ध्यान
0: गर्मी
1: दे।
0: में, आपने बहुत अच्छा समय काल का
1: हाँ
0: पूछा है,
1: जी हाँ
0: ये गर्मी में आता है, ये आमतौर पर घर का महिला जो है जो बकरी को देखरेख करते हैं उनको पता है कि कब गर्मी में आने वाली है, तो उसका ठीक 15 दिन पहले से उसको वो चावल के गेहूं थोड़ा एक मुठा करके उसको देना है।
1: अच्छा
0: देने से क्या होगा, ये जो मैंने पहले शुरुआत में कहा था जो उसका अंडा निकलता है वो अंडा बहुत पुष्ट निकलेगा, पुष्ट निकलने से जो मिलन होगा उसके बाद से उसका बच्चा पैदा होने का बहुत अच्छा चांसेस रहता है,
1: और एक से अधिक बच्चे भी
0: एक
1: हो
0: से
1: सकते हैं।
0: अधिक बच्चा होने का गुंजाइश रहता है।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जो घर में पालते हैं आमतौर पर तो पत्ती दे देते हैं, जो घास वगैरह जो भी बकरी खा लेती है, लेकिन इसको अगर जैसे आपने बताया कि नमक चाहिए, विटामिन चाहिए, किसान इतना ज्यादा शायद खर्चा नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी अगर
0: जानकारी का एक्चुअली बहुत ज्यादा खर्चा लिए बात नहीं है, थोड़ा सा जानकारी का अभाव है। आप देखिए हम लोग का ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज्यादातर आदमी चावल का बेस खाना खाते हैं, तो चावल से जो गंजी निकलता है उस गंजी में थोड़ा सा भी नमक दे दीजिए, आधा चम्मच मिनरल मिक्सचर उसमें मिला दीजिए, और एक ध्यान रखिएगा ये जो गंजी देना है एकदम बिल्कुल ठंडा नहीं देना है, उसमें इतना गर्म भी ज्यादा देना नहीं है जिसमें कि उसका जीभ जल जाए। इसको नापने के लिए हम लोग ये करते हैं जे अपना अंगुली उसमें डाल दीजिए, डालने के बाद आपको महसूस हो जे हम अंगुली गंजी से निकालने का जरूरत नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत गर्मी लग रहा है, उतना भर गर्मी जब रहेगा तब आप बकरी को दे दीजिए। घर में आमतौर पर सब्जी बनाते हैं, हरा सब्जी बनाते हैं, भाजी बनाते हैं, उससे जो चीज हम लोग फेंक देते हैं उसको थोड़ा सा काट के उस गंजी के साथ मिला दीजिए, वो गंजी खाते खाते बकरी वो खा लेंगे, तो उसी से भी इसका जो पोषक तत्व का कमी होता था वो मिल जाएगा। और चावल का गंजी मैं इसीलिए देना के लिए कह रहा हूं, देखिए हम लोग का आदत जो है जिस गंजी को फेंक देने का,

0: गंजी से बहुत सारे चावल का
1: पोषक तत्व
0: पोषक
1: निकल
0: तत्व
1: जाता
0: जो
1: है।
0: है वो निकल जाता है। वो जो हम डाल रहे थे ड्रेन में वो बकरी को दे देने से वो खा जाएंगे, और ठंडा हो जाने से बकरी को देने से वो बकरी खाती नहीं है।
1: अच्छा, थोड़ा सा गर्म रहना
0: थोड़ा सा
1: चाहिए।
0: गर्म रहने से वो बहुत अच्छा चाव से खा जाते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक मिला देने से उसको टेस्ट लगता है। तो इसी ढंग में हम दे सकते हैं। और एक चीज आपको बताएंगे, जब आप संतुलित आहार का बात कर रहे हैं, ये हम आम जनता जो एक दो बकरी पाल रहे हैं इनके लिए हमने बताया। जो किसान इसको खेती का रूप में देखेंगे, जे व्यावसायिक रूप में 10 से 15 पालेंगे, उसके लिए मैं इतना कहेंगे कि एक दाना बना लीजिए आप, जिसमें आप मकाई 40%, 1 क्विंटल दाना आपको बनाने के लिए मैं उसका अलग अलग जो उपचार होगा उसको बता रहा हूँ। 100 किलो दाना आप बनाइए, उसमें मक्का दीजिए 40 किलो, उसके बाद उसमें खली कुछ दे दीजिए। खली मतलब आप अंडमान में बहुत आसानी से कोकोनट खली मतलब कोपरा खली मिल जाता है, उसको दे दीजिए 20%। उसके साथ दाल चुनी दे दीजिए 10% दे दीजिए। उसके बाद आप दे दीजिए व्हीट ब्रांड, नहीं तो चावल का गुंडा जो होता है
1: भूसा
0: वो
1: जो होता
0: भी,
1: है।
0: भूसा जो है वो आप दे दीजिए। तो हो गया आपका 40, 10, 50, 70 हो गया, और दालचीनी 10 दे दीजिए, 80 हो गया। इसके बाद आपका उस जगह में जो चीज बहुत आसानी से मिलता है, जैसे चावल के समय चावल, गेहूं के समय गेहूं, ये सब चीज देके आप बाकी 20% कर लीजिए। और 2 किलो उसमें मिनरल मिक्सर दे दीजिए, 1 किलो नमक दीजिए, उसमें आप 100 किलो बन गया है। एक बकरी के लिए आप हर रोज 200 से 250 ग्राम उसको दाना उसी से देते जाइए। आप ध्यान रखिएगा जे इस दाना जो बनाइएगा, इस दाना को थोड़ा सा गोटा गोटा रखना है, उसको एकदम पाउडर जैसे आटा जैसे नहीं
1: नहीं
0: बनाना है।
1: बनाना।
0: आटा जैसे बनाइएगा तो इसमें थोड़ा सा परेशानी है, उसको खाने में परेशानी है, पचाने में परेशानी होता है।
1: अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि जो व्यावसायिक तौर पर करना चाहते
0: किस
1: हैं इस तरह से कर सकते हैं।
0: तरह से?
1: और एक जो समस्या बकरी पालन में आती है कि जैसे आपने कहा कि घर का जो बचा हुआ खाना है, तो कभी कभी कुछ पार्टी होती है या कोई फंक्शन होता है, तो जो खाना बच जाता है सब, जैसा गर्मी गर्म करने के भी लोग नहीं सोचते हैं, दे देते हैं, और बकरियों का पेट
0: ये
1: समस्या होती
0: बहुत
1: है।
0: बड़ा भूल हो जाता है हम लोग का, किसान भाई से ये बड़ा भूल हो जाता है, क्योंकि हम लोग देखे हैं अक्सर जो बकरी है, गाय है, भैंस है, इसका 4 स्टोमक रहते हैं, इसमें रूमेन कहते हैं, इसमें जाके पत्ती पचाने का जगह है। उस जगह में जब हम घर का आदमी का खाने वाला खाना उसको ज्यादा दे देते हैं तो उसका पेट फूल जाता है। पेट फूल जाने के बाद उसमें गैस पैदा होता है, और वो गैस सामने ओर से फेफड़ा के ऊपर प्रेशर डालता है। फेफड़ा के ऊपर प्रेशर डालने से वो देखिएगा थोड़ी देर के बाद, मतलब आपने दोपहर को खाना खिलाया, शाम को जाते जाते वो चार एकदम लग रहा है कि बिस्तर में सो गया, इसी ढंग में करेंगे और चितलाते रहेंगे, बै बै करते करते उसका देखिएगा पेट लगेगा कि ढलक जैसे हो गया, इसी से उसको दम तोड़ देते हैं।
1: अच्छा,
0: तो इसीलिए कभी भी जो पूरा दिन भर का खाना है उसमें 1/3 से ज्यादा खाना आदमी वाला खाना नहीं देना चाहिए।
1: बिल्कुल, हाँ,
0: गाय, भैंस, बकरी, ये
1: तीनों के लिए
0: तीनों चीज के लिए कभी भी आदमी जो खाना खाते हैं,
1: पका हुआ जो खाना है
0: पका
1: उनको।
0: हुआ जो खाना है, चावल दाल गेहूं का बेस जो दाना है, ये 1/3 से ज्यादा नहीं देना है। देने से ही उसका पेट में गैस पैदा होगा, उसका सिस्टम भी उसी ढंग में बना हुआ है, तो उसमें 2/3 उसका घास भूसा ये सब लेके भर्ती करना है,
1: और थोड़ा सा 1/3
0: थोड़ा
1: देसी घी।
0: सा देना है। आज जो वैज्ञानिक जानकारी हम लोग को मिला है इसके तहत हम लोग उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं,
1: जी हाँ,
0: उसको बदल नहीं सकते। बकरी को
1: बिल्कुल।
0: हम बदल नहीं सकते हैं, उसका आदमी जैसे खाना देके उसको बड़ा नहीं कर सकते।
1: तो डॉक्टर साहब, आपकी बातों से साफ है कि बकरी पालन में अगर थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा भी खर्च करे, तो भी उत्पादन ज्यादा लिया जा सकता है। समय पर बकरी गाभिन हो सकती है, बच्चे मिल सकते हैं। जो अज्ञानतावश किसान भाई ऐसा नहीं करते हैं, अगर वो थोड़ा सा ध्यान दे तो काफी लाभ इससे
0: काफी
1: कमा
0: लाभ हो
1: सकते
0: सकता
1: हैं।
0: है।
1: बिल्कुल,
0: जाते जाते और एक चीज हम बताना चाहेंगे किसान भाई को, इस जगह में साल भर बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण इसका अंदर में पेट में कीटाणु होने का बहुत ज्यादा शंका रहता है। तो इसीलिए बरसात शुरू होने का पहले और बरसात के बाद आप लोग हर बकरी को, गाय को डीवर्मिंग करा दीजिए,
1: कीड़ा
0: मतलब
1: मारने
0: कीड़ा
1: से
0: मारने का
1: पहले।
0: दवाई खिला दीजिए। उसके बाद फिर जैसे अप्रैल मई महीना में बरसात शुरू होगा तो अप्रैल का पहला सप्ताह में फिर आप एक बार कीड़ा मारने का दे दीजिए, क्योंकि होता है क्या, पोषक तत्व तो अच्छा देने से भी वो हमारा प्रोडक्शन में उसका

0: रिफ्लेक्ट नहीं होता है, इसके कारण है कि उसके अंदर में जो कीटाणु है वो सारे पोषक तत्व तो खा जाता है
1: जी, पेट में कीड़े रहने से
0: कीड़ा
1: कुछ
0: रहने से।
1: दिक्कत हो रहा है।
0: तो किसान भाई आमतौर पे बहुत अच्छा ढंग से ही पालते हैं, लेकिन छोटा छोटा जानकारी के अभाव में
1: जो लाभ
0: उनका
1: उनको मिलना
0: प्रैक्टिस में
1: चाहिए।
0: नहीं लाते हैं, उम्मीद करते हैं कि इसके बाद से उन्होंने जरूर इसको लाभ उठाएंगे।
1: बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, आज आप कार्यक्रम में आए, आपसे इतनी बातें हुई, जैसे कि आपने उम्मीद जताई है, किसान भाई जरूर इन बातों पर गौर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी किसान भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम को खुशी होगा जी हमारा बात किसान भाई कोई भी एक भी अपनाए तो हमको बहुत खुशी होगी। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: साथियों, अभी आपने डॉक्टर MS कुंडू से की गई ये बातचीत सुनी, जिसका विषय था बकरियों के लिए संतुलित आहार।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: और अब आइए कार्यक्रम के रुख को बदल कर ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

0: साथियों, अभी आपने ये गीत सुना और हमें लगता है कि इस गीत को आपने जरूर सराहा होगा। और अब साथियों, बदलते मौसम के बारे में जानकारी देने के लिए आइए हम आपको बता देते हैं मौसम पर आधारित कृषि परामर्श।
1: अगले दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आगामी 2 अगस्त के दौरान मेघगर्जन, बिजली चमकने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशा व्यक्त की गई है। किसानों को वर्षा रहित अवधि में कृषि कार्य करने, मेघगर्जन के दौरान खेतों में कार्य न करने तथा खेतों में जल भराव से बचाव हेतु उचित जल निकासी बनाए रखने तथा उर्वरकों एवं पौध संरक्षण रसायनों का प्रयोग केवल शुष्क मौसम में करने की ही सलाह दी जाती है। वर्षा से ठीक पहले उर्वरकों एवं पौध संरक्षण रसायनों का प्रयोग न करें। प्रतिकूल मौसम के दौरान ही पशुओं को सुरक्षित आश्रय में रखें और अंडमान एवं निकोबार तट के साथ सटे हुए समुद्री क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज सतही हवाएं, जिनके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं, चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। समुद्र की स्थिति उग्र रहने की संभावना है, इसलिए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। वर्षा से ठीक पहले मौसम संबंधी जानकारी एवं कृषि मौसम परामर्श प्राप्त करने के लिए मेघदूत ऐप तथा बिजली गिरने की चेतावनी के लिए दामिनी ऐप का उपयोग करें। साथियों, इस मौसम पर आधारित फसलों के लिए विशिष्ट सलाह दी जाती है कि रोपणी क्यारियों में प्रतिरोपित धान के खेतों में रुक रुक कर होने वाली वर्षा के कारण अस्थायी जल भराव से बचाव हेतु उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें, खेत की मेड़ों की मरम्मत करें तथा वर्षा के जल का संरक्षण करें। प्रतिरोपित धान की फसल में रुपाई के 20 से 25 दिनों के बाद निराई गुड़ाई करें और स्थानीय अनुशंसा के अनुसार नाइट्रोजन की दूसरी किश्त चावल की खेती में तभी दें जब मिट्टी में पर्याप्त नमी हो और निकट भविष्य में अधिक वर्षा की संभावना ना हो। यदि अनुशंसित मात्रा 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर है तो दूसरी किश्त के रूप में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। जैविक खेती

0: अपनाने वाले किसान स्थायी रूप से अनुशंसित जैविक विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। बागवानी फसल करने वाले किसानों को सलाह दी जाती है कि काली मिर्च, अदरक एवं हल्दी जैसी जल भराव संवेदनशील फसलों के नालियों की उचित व्यवस्था बनाए रखें, ताकि पानी का ठहराव ना हो और निचले इलाकों में पानी की निकासी का उचित इंतजाम करें, ताकि बारिश का अतिरिक्त पानी जल्दी निकल जाए। सुपारी के बागान वाले किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सुपारी, नारियल तथा मसालों सहित भंडारित कृषि उपज को नमी से सुरक्षित रखें, ताकि खराब होने से उन्हें जाया जा सके। उपज को स्वच्छ, सूखे एवं अच्छी तरह हवादार वाले स्थानों में भंडारित करें। पशुपालन करने वाले किसान भाइयों को सलाह है कि वे गाय के लिए पशु आहार को वर्षा एवं नमी से सुरक्षित रखें, ताकि फफूंद, मोल्ड आदि का विकास ना हो। आवश्यक एवं स्थानीय अनुशंसा के अनुसार ही अनुमोदित आहार संरक्षक जैसे प्रोपियोनिक अम्ल का उपयोग करें। फफूंद लगा या खराब दिखने वाला पशु आहार पशुओं को ना खिलाएं और उसे तुरंत ही नष्ट कर दें। मछली पालकों को सलाह दी जाती है कि मत्स्य बीज संचयन के पूर्व तालाब से जलीय खरपतवार तथा परभक्षी एवं अवांछित मछलियों को हटा दें। तालाब में जल प्रवेश एवं निकास स्थानों पर जाली लगाएं, ताकि अवांछित मछलियों के प्रवेश को रोका जा सके। मत्स्य बीज संचयन से पहले तालाब में जल की गहराई, पीएच तथा घुलित ऑक्सीजन की जांच करें, और सभी मानक अनुकूल होने के बाद ही चूना अथवा जैविक खाद का प्रयोग करें।
1: साथियों, अभी आपने मौसम पर आधारित कृषि परामर्श सुना और ये जानकारी हमें प्राप्त हुई थी केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सौजन्य से। अब वक्त हो चला है आपको बताने का आज पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर। हमने आपसे पूछा था, एक्टिवेटेड कार्बन नारियल के किस भाग से बनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, एक्टिवेटेड कार्बन नारियल की खोल यानी नरेटी से बनाया जाता है। तो अब आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इसी के साथ आज के हमारे कृषि जगत कार्यक्रम का समय अब यहीं पर पूरा होता है, तो कल शाम 6 बजे हम आपसे पुनः मिलेंगे एक नई जानकारी लेकर। और अब जोया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 6:30 में है। अब आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम पॉप मसाला।

अब यहाँ विशाल डडलानी का गाया तलाश फिल्म का ये रीमिक्स गीत सुन रहे थे। अब सुनिए सुनिधि चौहान का गाया एक खिलाड़ी एक हसीना फिल्म का ये गीत।

अभी आप चितकबरें शेड्स ऑफ ग्रे फिल्म का गीत सुन रहे थे। आवाज़ थी सुमित्रा अय्यर की। अब कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल सरों में कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, कुमारा फिल्म से।

अभी आप सोनू निगम और अलका याग्निक के युगल स्वरों में कुवारा फिल्म का गीत सुन रहे थे। भेजा फ्राई टू फिल्म में आइए अब सुनते हैं श्री डी और अपेक्षा दांडेकर का गाया ये गीत।

अभी आप चल मेरे भाई फिल्म का गीत सुन रहे थे। आवाजें थी शंकर महादेवन, लेस्ली लुईस और डोमिनिक की। अब प्रस्तुत है शहर रविजियानी का गाया आई हेट लव स्टोरीज फिल्म का ये गीत। गीत कुमार के हैं तथा संगीत है विशाल शेखर का।

शफ़ाक़त अमानत अली और सुनिधि चौहान के गाए आई हेट लव स्टोरीज़ फिल्म के इस गीत के साथ ही पॉप मसाला कार्यक्रम समाप्त हुआ।

मी डिम्बीप 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। श्रोताओं, एक सूचना। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज क्रिएटिव्स, क्या आपके ज़िले में कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुँचाना है। यदि आप भी एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपने क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने ज़िले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पोस्टकार्ड अपलोड करें। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर

प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दें। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाएं। सूचना समाप्त हुई।

0: श्रोताओं, हम आपको पुनः बता दें, आज संध्या 7:30 पर युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे मैथिली शरण गुप्त की जयंती पर चर्चा, तत्पश्चात पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादें। रात 8:15 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। रोजगार समाचार और गौरव गान का समय रहेगा रात 8:30। रात्रि 10:00 व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा संदेह से आते हैं, जबकि एफएम 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8:00 संसद समीक्षा, 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से इस ब्रेक के बाद।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
4: आ गई सैलरी?
5: हाँ।
4: नए झुमके?
5: ना, पहले बचत।
4: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
6: RBI कहता है,
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
8: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
9: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
10: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक क्षमता बढ़ाने वाले विधेयक को सहमति दी। अब न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़कर 37 हो जाएगी। राज्यसभा ने MSME क्षेत्र में भुगतान प्रक्रिया को मजबूत करने वाला विधेयक पारित किया। डॉ BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में नशा मुक्ति पर जागरूकता कार्यक्रम में सकारात्मक सोच और आत्म अनुशासन का महत्व बताया गया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तटीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए पुलिस मरीन फोर्स का विशेष प्रशिक्षण शुरू।

सांधे समाचारों के साथ मैं ज्योति लकड़ा। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में और संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। यह संख्या

मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त है। इस वर्ष मई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में भुगतान में देरी की समस्या दूर करना और विवाद समाधान की प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके तहत मध्यस्था विफल होने पर 30 दिनों के भीतर मामला भेजने और 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान किया गया है। 6 महीने से अधिक समय तक लंबित मामलों में आपूर्तिकर्ता को देय राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने उद्योगों और संबंधित प्रतिष्ठानों से सहमति प्रमाण पत्र सीटीओ के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने को कहा है। सभी उद्योग संस्थान, स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, स्थानीय निकाय और अन्य संबंधित हितधारक यूसीएमएस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। समिति ने कहा है कि पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप आवेदनों पर विचार किया जाएगा। जिन प्रतिष्ठानों के पास वैध सहमति प्रमाण पत्र नहीं है, वे जल्द अपना आवेदन जमा करें। अधिक जानकारी और तकनीकी सहायता के लिए प्रदूषण नियंत्रण समिति से संपर्क किया जा सकता है। अंडमान निकोबार प्रादेशिक असंगठित मजदूर एवं कर्मचारी कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रंगलाल हल्दर मुख्य अतिथि और दक्षिण अंडमान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जॉन रॉबर्ट विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर असंगठित क्षेत्र के 25 उत्कृष्ट श्रमिकों को उनके योगदान के लिए श्रम रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंडमान निकोबार पैरा वेटनरी संघ के अध्यक्ष आरपी यादव ने मध्योत्तर अंडमान का दौरा किया। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने पैरा वेटनरी कर्मचारियों से संवाद कर उनकी सेवा संबंधी समस्याओं एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने पैरा वेटनरी कर्मचारियों के साथ मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। अध्यक्ष ने मायाबंदर के जोनल अधिकारी से मुलाकात कर वेटनरी कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, नशा मुक्ति पर जागरूकता कार्यक्रम और पुलिस प्रशिक्षण। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। डॉ बीआर अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में विकसित भारत नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे की लत और नकारात्मक विचारों पर विजय पाने के लिए मन की शक्ति विषय पर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। संस्थान के सम्मेलन कक्ष में हुए इस सत्र में ब्रह्म कुमारी बहन शर्मिष्ठा ने विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच, आत्म अनुशासन और आंतरिक शक्ति का महत्व बताया। उन्होंने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और जिम्मेदारी से निर्णय लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में लगभग 150 विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों ने भाग लिया। अंडमान निकोबार पुलिस मरीन फोर्स ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तटीय पुलिसिंग पर 2 सप्ताह का कैप्सूल प्रशिक्षण शुरू किया है। उद्घाटन समारोह में पुलिस महानिदेशक रविन्द्र सिंह यादव ने पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता बढ़ाने और विशेष प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया। यह प्रशिक्षण 14 अगस्त तक प्रातरापुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी गुजरात की टीम द्वारा दिया जाएगा। प्रशिक्षण में समुद्री सुरक्षा, तटीय निगरानी, नौवहन तथा खोज और बचाव अभियान जैसे विषय शामिल हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2026 सत्र के विभिन्न

पाठ्यक्रमों में नए दाखिले और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है। दाखिले और पुनः पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। विद्यार्थी इग्नो की वेबसाइट के माध्यम से नए दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि पुनः पंजीकरण इग्नो समर्थ पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। अतिरिक्त जानकारी या सहायता के लिए विद्यार्थी श्री विजयपुरम स्थित इग्नो क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। डॉ बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परामर्श प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। यह परामर्श प्रक्रिया संस्थान की ग्रीन बिल्डिंग में होगी। कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल पर अस्थायी सूची 7 अगस्त को जारी की जाएगी। इस पर दावे और आपत्तियां 8 और 9 अगस्त तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम वरीयता सूची 10 अगस्त को जारी होगी, जबकि परामर्श प्रक्रिया 11 और 12 अगस्त को आयोजित की जाएगी। राज्य प्राधिकरण क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण में वन विशेषज्ञ और लेखा विशेषज्ञ के एक एक पदों के लिए साक्षात्कार की तिथि तय कर दी गई है। साक्षात्कार 18 अगस्त को वन सदन के समिति कक्ष में प्रातः 9 बजे से होगा। सभी अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार शुरू होने से कम 30 मिनट पहले उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। उप शिक्षा कार्यालय दक्षिण अंडमान द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए अंतर विद्यालय प्राथमिक स्तरीय फुटबॉल लीग कम नॉकआउट प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। यह प्रतियोगिता 5 से 13 अगस्त तक भातुबस्ती स्कूल और गर्ल्स स्कूल के मैदान में होगी। इसमें क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों के बालक और बालिका वर्ग के विद्यार्थी भाग लेंगे। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना के साथ टीम भावना और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना है। मायाबंदर स्थित महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय में विभिन्न विषयों के लिए विषय विशेषज्ञों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। यह सूची महाविद्यालय और प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक क्षमता बढ़ाने वाले विधेयक को सहमति दी। अब न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़कर 37 हो जाएगी। राज्यसभा ने एमएसएमई क्षेत्र में भुगतान प्रक्रिया को मजबूत करने वाला विधेयक पारित किया। डॉ बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में नशा मुक्ति पर जागरूकता कार्यक्रम में सकारात्मक सोच और आत्म अनुशासन का महत्व बताया गया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तटीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए पुलिस मरीन फोर्स का विशेष प्रशिक्षण शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मेरा नाम
1: गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 हो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
4: ओह लवली, वेल डन।
3: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
4: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
5: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
4: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
5: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
4: आप कौन?
6: RBI कहता है
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
8: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को विशेष चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय इलाकों में हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जिसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। अतः मछुआरों को 6 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। ये था मौसम का हाल। आइए अब सुनते हैं जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी कैमल बे लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल 4 तारीख को सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापस चलेगा। नालंदा जलयान ननकौड़ी होते हुए कैमल बे की यात्रा पर कल 4 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान 6 तारीख को सुबह 8 बजे कैमल बे से छूटकर ननकौड़ी होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। मायबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर एमवी हटबे परसों यानी 5 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और ये जलयान 6 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी जॉली बॉय लिटिल अंडमान जाने के लिए 5 तारीख को सवेरे 6:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान उसी दिन दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापस चलेगा। स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए एमवी रानी चंगा कल 4 तारीख को सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और इस जलयान की वापसी कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप जाने के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी बम्बुका कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

अब सुनिए जन सूचनाएं। क्या आपके जिले में कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये।

की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने ज़िले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दें। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने ज़िले को राष्ट्रीय पहचान दिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

अब यहाँ उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया मिस्टर बेचारा फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे समीर तथा संगीतकार थे आनंद मिलिंद। अब सुनिए परवरिश फिल्म में आशा भोसले, आरती मुखर्जी, शैलेंद्र सिंह और अमित कुमार की आवाज़ों में ये गीत। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

परवरिश फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:30 हुए हैं। अब युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम होगा युवा वाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 3 अगस्त है और आज के दिन राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, उनका जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद के चिरगांव में हुआ था। उन्होंने अपनी ओजस्वी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, भारतीय संस्कृति, सामाजिक चेतना और मानवीय मूल्यों का प्रभावी चित्रण किया। उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ भारत भारती, साकेत और यशोधरा आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी जयंती हमें हिंदी भाषा के सम्मान, साहित्य प्रेम और राष्ट्र सेवा की भावना को अपनाने की प्रेरणा देती है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज इस माह का पहला सोमवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादें।

कुछ तो मैं गलत फहमियाँ बढ़ने लगती है, तब जिंदगी वैसी नहीं रहती जैसी कभी हुआ करती थी। जो सपने मिलकर देखे थे वे धीरे धीरे बिखरने लगते हैं। इंसान भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करता है और हर खुशी अधूरी सी लगती है। दिल बार बार सोचता है कि अगर थोड़ा सा विश्वास और समझ होती तो शायद सब कुछ बच जाता। कुछ बिछड़ने के बाद ही एहसास होता है कि किसी का साथ जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होती है।

दोस्तों, कुछ रिश्ते वक्त के साथ ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें कभी ख़त्म नहीं होती। इंसान लाख कोशिश कर ले कि आगे बढ़ जाए, मगर दिल बार बार उसी अतीत में लौट जाता है जहाँ कभी सच्ची मोहब्बत बसी थी। हर जगह, हर मौसम और हर खामोशी में उसी की मौजूदगी महसूस होती है। समय घाव भर सकता है, लेकिन कुछ यादें उम्र भर दिल का हिस्सा बनी रहती हैं। तब मन बस यही चाहता है कि काश ये यादें कभी पीछा छोड़ दें, मगर वो भुलाए ना भूलती हैं।

दोस्तों, जब अपने दिल की बात किसी तक पहुंचाना मुश्किल हो जाए, तब इंसान हर उस चीज़ से उम्मीद लगाने लगता है जो उसके और उसके अपने के बीच की दूरी मिटा सके। मन चाहता है कि कोई उसकी तड़प, उसका इंतज़ार, उसका प्यार उस इंसान तक पहुंचा दे। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर शाम उसी की याद छोड़ जाती है। जब मिलना मुमकिन ना हो, तब दिल अपनी भावनाओं को ही उड़ाकर उसके पास भेज देना चाहता है।

दोस्तों, कुछ इंतज़ार ऐसे होते हैं जो सिर्फ समय के नहीं बल्कि रूह के होते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी अपने से मिलने का वादा बहुत पहले किया था और आज भी दिल उसी का इंतज़ार कर रहा है। उसकी याद आते ही आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती। हर मौसम उसी की याद दिलाता है और हर धड़कन उसी का नाम दोहराती है। फिर लगता है कि ये आंखें भी किसी बरसात से कम नहीं, जो हर पल उसकी यादों में भीगी।

तो जब इंसान किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपनी हर कोशिश कर लेता है और फिर भी उसे सिर्फ दर्द ही मिलता है, तब एक समय ऐसा आता है जब दिल जवाब दे देता है। शिकायतें खत्म हो जाती हैं, आंसू भी थम जाते हैं और बस एक गहरी थकान रह जाती है। मोहब्बत अब भी होती है लेकिन उसे निभाने की ताकत नहीं बचती। तब इंसान गुस्से से नहीं बल्कि टूटे हुए दिल से खुद को रोक लेता है, क्योंकि कुछ दर्द होते हैं जिन्हें सहने की भी एक सीमा होती है, और उसके बाद बस लगता है कि बस अब और नहीं।

दोस्तों, कभी कभी प्यार अधूरा इसलिए नहीं रह जाता कि चाहत कम होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि हालात साथ नहीं देते। दिल चाहता है कि सामने वाला हमेशा पास रहे, लेकिन अपने ही टूटे हुए हालात उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। इंसान डरता है कि कहीं उसकी मजबूरियां किसी और की खुशियां न छीन लें, इसलिए वह अपने दर्द को छुपाकर भी सामने वाले की भलाई सोचता है। यह त्याग आसान नहीं होता, लेकिन सच्ची मोहब्बत कभी कभी यही सिखाती है कि चाहत दिल में रहे मगर इतनी भी ना बढ़े कि दोनों की जिंदगी बोझ बन जाए।

क्या आपके ज़िले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर ज़िले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने ज़िले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने ज़िले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने ज़िले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। तो दोस्तों, इसी गीत के साथ हमारा आज का यह यादें कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। वादा करते हैं जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त दीपक कुमार सिंह को अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

अभी आप युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब अगला कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

कांग्रेस समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही और दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:10 पर ही बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित किया। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधन को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को सदन में ये विधेयक पेश किया था। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इससे पहले 2019 में बढ़ाई गई थी। उस समय प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को नया वैधानिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ये विधेयक वर्ष 1959 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा ताकि आधुनिक शैक्षणिक और शोध जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके तहत संस्थान को एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में स्थापित करने और उसके प्रशासनिक एवं अकादमिक ढांचे को मजबूत करने का प्रावधान है। विधेयक में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति संस्थान के विजिटर होंगे और इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए प्रावधान है जो इसका प्रमुख नीतिगत कार्यकारी निकाय होगा। पिछले बजट सत्र के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने संसद को सूचित किया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI को एक निगमित निकाय के रूप में शामिल करने और इसके प्रभावी संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा की आज सुबह बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता को उद्देश्य उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद जब उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, कृपया प्रश्नकाल चलने दें। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 और फिर अपराह्न 2 भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही और कार्यवाही सुचारू रूप से

आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला विधेयक आज पारित किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर

नहीं चल सकी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 11वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कर दिया। सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इन खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। सभापति ने उम्मीद जताई कि ये खिलाड़ी आगे भी अपनी मेधा से देश को गौरवान्वित करेंगे। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू करते हुए मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों के नाम पुकारे। इसी दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर आपत्ति जताते हुए सभापति ने कहा कि सदन में तख्तियां नहीं दिखाई जा सकती। इसके बाद हंगामे के बीच सभापति की अनुमति से भाजपा की दर्शना सिंह ने स्वीप एपनिया का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 90 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इसके खतरों से अनजान हैं। उन्होंने कहा कि स्लीप एपनिया नींद से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, जिसमें सोते समय बार बार सांस रुकती और शुरू होती है। भाजपा सदस्य ने इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने की मांग की। इसी पार्टी की अलका गुर्जर ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद के पास स्थित भगवान देव नारायण की पवित्र जन्म और प्राकाट्य स्थली मालासिरी डोंगरी के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्थान देश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई सुझाव दिए। मनोनीत सदस्य उज्ज्वल निकम ने अदालतों में लंबित मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मामलों की सुनवाई में विलंब का एक कारण उनकी अधिक संख्या भी है। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर उप सभापति हरिवंश ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने फिर से नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति की अनुमति से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलते हुए राम मंदिर अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी आसन से अनुरोध किया कि विधेयक पर चर्चा शुरू हो चुकी है तथा किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाए। इसके बाद उपसभापति ने कांग्रेस के अजय माकन से अपनी बात रखने के लिए कहा, किंतु माकन विधेयक के बजाय अन्य विषयों पर बोलने लगे। सदन में मौजूद संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आसन की ओर से बार बार विधेयक पर बोलने के लिए कहा गया, लेकिन विपक्षी सदस्य विषय को भटकाते हैं। उन्होंने माकन के संबोधन को कार्यवाही से निकालने की मांग की। हंगामे के बीच एमएसएमई विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और ये विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी है। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने कहा कि एमएसएमई की मदद से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। बीजत के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने कहा कि जीडीपी में एमएसएमई का 35% योगदान रहता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मूल विधेयक 2026 में आया था और 20 साल बाद इसका संशोधन आया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान एमएसएमई क्षेत्र में बहुत बदलाव हो चुका है। विधेयक में बड़ी चुनौतियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने कहा कि विधेयक में मध्यस्थता और फैसलों के त्वरित निपटारे के लिए नए नियम तय किए गए हैं, जो सराहनीय कदम है, लेकिन इन नियमों का पालन भी जरूरी है, अन्यथा न्याय मिलने में देरी होगी। अन्ना द्रमुक के एम थंबीदुरई ने कहा कि देश के विकास के लिए एमएसएमई जरूरी है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि वह तमिलनाडु में एमएसएमई कार्यक्रम को सहयोग दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन ने विधेयक का

0: समर्थन करते हुए कहा कि एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये विधेयक उसे शक्ति प्रदान करेगा। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव वीड़ा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके प्रावधान दर्शाते हैं कि लघु कंपनियों के लिए सुचारू व्यावसायिक संचालन को बढ़ाने पर सरकार निरंतर ध्यान दे रही है। बीआरएस के रविचंद्र बद्दी राजू ने कहा कि विधेयक मध्यस्थता और मध्यस्थता कार्यवाही को ऑनलाइन माध्यमों से संचालित करने की अनुमति देता है, जिससे विवादों का समाधान तेजी से अधिक सुलभ और कुशल तरीके से हो सकेगा। बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने कहा कि विधेयक में उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जो एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने पर विचार करे। चर्चा में यूपीएलएल के प्रमोद बोरो, भाजपा के संजय सेठ, कांग्रेस के नीरज डांगी, प्रवीण चक्रवर्ती और बीजू जनता दल की सुलता देव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाला ऋण वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान में सुधार करना और नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। श्री मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है बल्कि इसके टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 39% हो गई है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा एवं नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उप सभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। सरकार ने लोकसभा में कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता, किफायती शिक्षा और समावेशन पर विशेष बल देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सभी विद्यार्थियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। इनका प्रशासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित अभिभावकीय आय सीमा तथा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार SC, ST और OBC वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है। उच्च शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन PM-USP योजना का संचालन करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जैसा कि योजना के दिशा निर्देशों में निर्धारित है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब आरंभ होता है फिल्म गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तिरंगा फिल्म के इस गीत से। आवाजें हैं मोहम्मद अजीज और साथियों की। संतोष आनंद के लिखे गीत को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों का गाया जवानी जिंदाबाद फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे समीर तथा संगीतकार थे आनंद मिलंद। अब सुनिए आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार आनंद बख्शी का लिखा जय शिव शंकर फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं अमित कुमार और अलका याग्निक की।

अमित कुमार और अलका याग्निक के गाए जय शिव शंकर फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरव गान। पहले रोजगार समाचार। अंडमान एवं निकोबार केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन तथा राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर विभिन्न पदों के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों में MIS डाटा एनालिस्ट का एक पद, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के दो पद, अकाउंटेंट का एक पद तथा HMIS असिस्टेंट के 6 पद शामिल हैं। चयनित अभ्यर्थियों को MIS डेटा एनालिस्ट पद के लिए 40,000 प्रतिमाह, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एवं अकाउंट पद के लिए 30,000 प्रतिमाह तथा HMIS असिस्टेंट पद के लिए 20,000 प्रतिमाह सांकेतिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। नियुक्ति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता प्रत्येक पद के अनुसार अलग अलग निर्धारित की गई है। MIS डेटा एनालिस्ट पद के लिए BE/BTech या MCA या MBA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट अथवा समकक्ष योग्यता के साथ संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव आवश्यक है। MPH मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ अथवा समकक्ष योग्यता भी मान्य है।

सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री, संबंधित तकनीकी योग्यता तथा TIA, A+ एवं MCSA क्षेत्र का अनुभव अपेक्षित है। अकाउंटेंट पद के लिए MCOM डिग्री के साथ कंप्यूटर का ज्ञान या BCOM डिग्री के साथ लेखा एवं वित्त क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। HMIS असिस्टेंट पद के लिए BCA कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा समकक्ष विषय में स्नातक डिग्री तथा संबंधित अनुभव आवश्यक है। सभी पदों के लिए आयु सीमा 21 से 60 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की तिथि 10 अगस्त 2026 है। साक्षात्कार संबंधित जानकारी अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही 22 जुलाई का द डेली टेलीग्राम भी देखा जा सकता है। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं गौरव गान।

अभी आप गौरव गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल

0: का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कर बही साक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
3: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
0: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
4: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
5: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
0: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
6: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त

0: हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
2: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
4: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
4: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और

उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है।

0: पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
1: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले दो दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Lok Sabha passes bill to increase the strength of Supreme Court judges from 33 to 37. Rajya Sabha clears legislation to simplify dispute resolution and address payment delays faced by MSMEs. In assembly by-polls, Jan Suraj leader Prashant Kishore wins Bankipur seat in Bihar, BJP retains Manjalpur in Gujarat, Congress keeps Datia in Madhya Pradesh. Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar expands cabinet, inducting 19 new ministers. Red alert issued for very heavy rainfall in Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In POJK, situation worsens overnight as security forces open fire on protesters refusing to disperse. Young cyclist Harshita Jhakar becomes first Indian woman to feature at Tour de France Fama in Switzerland. And now the news in detail. The Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year,

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। पवन जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मुकेश, बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम पर आकर।
0: जी दोस्तों, आज फोन हर हाथ में है। UPI, ऑनलाइन शॉपिंग, सरकारी योजनाएं, सब डिजिटल हो गया है। सुविधा के साथ खतरा भी बढ़ गया है। फर्जी कॉल, नकली लिंक, OTP का झांसा, डीप फेक वीडियो, ठग नए नए तरीके अपनाकर हर दिन ला रहे हैं। लेकिन डरिए मत, जागरूक रहिए। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे साइबर फ्रॉड कैसे होता है, उससे बचें कैसे, और धोखा हो जाए तो सहायता कहां मिलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-7117, 2371-7104

0: है और 2-3-3-1-4-4-4-4 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले पवन जी आपसे जानना चाहेंगे, आज भारत में सबसे आम 3 तरह की साइबर धोखाधड़ी कौन सी हैं? डिजिटल अरेस्ट, OTP फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट स्कैम, इनमें नया ट्रेंड क्या है?
1: आज जो नया ट्रेंड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तड़का लगा कर आता है।
0: जी
1: आजकल आप जो भी कार्यक्रम या जो भी आप ये साइबर फेंसेस देख रहे हैं
0: जी
1: उन सब में कहीं ना कहीं मिश्रण हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उदाहरण के तौर पर आजकल डिजिटल अरेस्ट जो होता है उसमें भी जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो डिजिटल अरेस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। जिस व्यक्ति को आप ऑनलाइन वीडियो पर देखते हैं वो रियल नहीं होता, वो AI द्वारा जनरेटेड होता है। जो आवाज़ होती है वो AI द्वारा जनरेटेड होती है। अल्टीमेट उद्देश्य बहुत क्लियर है कि आपने लोगों को ठगना है और अब जो ठगाई करनी है वो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस तरीके से करनी है कि अगर पुलिस तफ्तीश भी करना चाहेगी
0: तो
1: आप तक पहुंच नहीं पाएगी और साइबर क्रिमिनल मजे से अपना साइबर क्राइम भी करेगा, पैसे भी उड़ाएगा और तमाशा देखेगा। तो ये आजकल नया ट्रेंड नजर आ रहा है, इसी की रेप्लिकेशन मुझे और प्रकार के जो फ्रॉड्स हैं उसमें नजर आती है।
0: जी बिल्कुल। तो एक आम आदमी को कैसे पता चले कि उसके साथ साइबर फ्रॉड होने वाला है, उसके लिए 3 रेड फ्लैग क्या हो सकते हैं?
1: 3 रेड फ्लैग। पहला, अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी निर्णय लेने के लिए विवश कर रहा है तो ये पहला इंडिकेशन है कि साहब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दूसरा, अगर कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये 2nd रेड फ्लैग है कि साहब ये कहीं ना कहीं एक स्कैम का हिस्सा है। और तीसरा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं आपको अर्जेंसी के माध्यम से आपको पुश कर रहा है कि आप एक अर्जेंट इमीडिएट एक्शन लीजिए
0: जी,
1: क्योंकि आपके परिवार में कोई बंदा प्रॉब्लम में आ गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी का अरेस्ट हो गया है। बॉटम लाइन ये है कि आज हमारा जो ना COVID-19 के बाद जीवन इसलिए परिवर्तित हो चुका है क्योंकि 2 चीज़ें COVID-19 सदैव के लिए हमारे जीवन में छोड़ चुका है
0: जी।
1: एक है डर और दूसरा है पैनिक। साइबर क्रिमिनल्स ने आज इसी डर इसी पैनिक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है और यही कारणवश है कि आज अधिकांश लोग, चाहे आप बहुत प्रशिक्षित हों चाहे आप पढ़े लिखे ना भी हों, लेकिन आप डिजिटल रिस्क के और अन्य और प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड्स के शिकार होते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से, महेंद्र सिंह। महेंद्र जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से।
2: आमंत्रित विशेषज्ञ आदरणीय नमस्कार।
1: नमस्कार
2: महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई फ्रॉड हम पर कॉल करता है कि आपकी OTP दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो इनकी शिकायत कहाँ दर्ज की जाए, इनका नंबर क्या है?
1: देखिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। आजकल कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से आपको टारगेट करने का प्रयास करता है। तो द मोमेंट आपको लगे कि आप साइबर क्राइम के शिकार होने वाले हैं या कोई आपको शिकार बनाने वाला है तो आपके पास 2 विकल्प हैं जो केंद्रीय सरकार ने आपको दिए हैं। पहला, कुछ हो या ना हो अपने फोन नंबर से एक नंबर घुमाइए, नंबर है 1930
0: जी,
1: 1930। ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप फोन करते हैं और फोन उठता है तो फोन कोई नॉर्मल टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं उठाता, फोन उठाते हैं पुलिस अधिकारी। अब इन लोगों का डायरेक्ट टाई अप आपके बैंक्स के साथ है ताकि अगर आपके यहाँ कोई फ्रॉड हुआ है, कुछ हुआ है, आप तुरंत कॉल करेंगे, ये तुरंत ही अपने फोन के नेटवर्क पर, अपने कंप्यूटर के नेटवर्क पर देख लेंगे कि साहब आपके जो बैंक का जो चैनल है उसके अंदर पैसा है या नहीं है
0: जी।
1: अगर पैसा है तो उसको ब्लॉक करेंगे, और ब्लॉक करने का मतलब है कि 2-3 हफ्ते में पैसा खुद ब खुद आपके अकाउंट में आ जाएगा
0: जी।
1: और अगर उन्हें कुछ और पता लगेगा तो आपको भी बताएंगे। लेकिन दूसरा जो आपको और बहुत इफेक्टिव रेमेडी सरकार ने दी है वो ये है कि आप एक वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसका नाम है cybercrime.gov.in, यानी कि ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। अपने घर बैठे हुए बिना थाने जाए हुए आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से। और

0: आपकी रिपोर्ट दर्ज होते ही आपको ऑनलाइन ही एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है जो गृह मंत्रालय आपको प्रदान करता है। ये नंबर आपके लिए एक परमानेंट नंबर बन जाता है क्योंकि इसके माध्यम से आप कॉन्स्टेंटली अपने केस की जो प्रगति है, प्रोग्रेस है,
1: उसके बारे में
0: आप लगातार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ हो या ना हो, ये दो चीजें आप याद रखिए, 1930-1930 और cybercrime.gov.in। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में मैं मानता हूं कि दो प्रकार के लोग दुनिया में है, एक वो जिन्हें मालूम है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं
1: जी,
0: और दूसरे वो जिन्हें नहीं मालूम कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। तो चाहे आप को मालूम हो या ना हो, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर मुझे अटैक हुआ है या जब मुझे होश आया कि साहब मैं टारगेट बन गया हूँ, विक्टिम बन गया हूँ साइबर क्राइम का, तो ये दो विकल्पों को तुरंत इस्तेमाल करिए, बहुत इफेक्टिव हैं और मोर इम्पॉर्टेंट सरकार द्वारा नागरिकों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का एक नया अप्रोच है जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, विपिन। विपिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछें क्या सवाल है आपका।
2: जी नमस्कार सर, मैं विपिन बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश सागर से।
1: जी
2: सर मेरा सवाल ये था कि सोशल मीडिया पे आजकल देखा जाता है बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें बहुत इजी लोन मिल सकता है ऐसा दावा करते हैं, तो सर ये हम कैसे समझें कि फ्रॉड है जो ऐप्स हैं या फिर इसमें सच में लोन मिल सकता है या फिर धोखाधड़ी भी हो सकती है।
0: विपिन जी आज एक चीज समझनी है, वो ये कि दुनिया में ना फ्री लंच नाम की चीज नहीं होती, कुछ चीज मुफ्त नहीं मिलती। दूसरी चीज ये समझनी है कि अगर आपको कुछ ऐसा मन लुभावना ऑफर ऑनलाइन आ रहा है तो और वो बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी खतरे की घंटी बज जानी चाहिए, क्योंकि जो टू गुड टू बी ट्रू ऑफर होता है वो एक्चुअली वास्तविक तौर में कहीं ना कहीं झोल लेकर आता है। तो आजकल ये जितने भी ये तुरंत लोन ऐप्स वाली कहानियां हैं, कोशिश करें कि इनसे आप मीलों दूर रहें तो अच्छी बात है। क्यों? अगर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें
1: जी,
0: इनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें, ये स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि साहब आपका मैं पूरा डेटा लूंगा, उस डेटा का दुरुपयोग करूंगा, आपकी निजता के अधिकार का हनन होगा और आप चुपचाप बैठेंगे, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा उनके फाइन प्रिंट में कहा जाता है, बोलते कुछ और हैं, जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं तो वो बहुत ही तगड़े और बहुत ही मोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वीक लगाते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो पर डे लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पर मंथ लगाते हैं। अब आज आपको जब FD 7% देती है और वो अगर आपसे 3% प्रति माह या 2% प्रति वीक लेना शुरू कर दें तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो जल्दबाजी में मत करिए, एक तो जल्दबाजी में कोई लोन लेना नहीं है, दूसरा लोन लेना है तो आप अधिकृत बैंक के पास जाइए, नेशनलाइज बैंक के पास जाइए, उनसे लोन लीजिए। ये ऑनलाइन लोन कहीं ना कहीं फ्रॉड के नए स्वरूप हैं और जितनी जल्दी आप समझ लीजिए कि वो मछुआरे हैं जिन्होंने आपको जाल फेंक रखा है अगर आपको पकड़ने के लिए, अगर आप केयरफुल ना हुए तो आप इस जाल में फंस जाएंगे। एक बार आप फंस गए तो फिर आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेरे पास केस आया जहां पर एक क्लाइंट ने केवल 15,000 रुपए लोन लिए
1: जी,
0: क्योंकि उसको एक हफ्ते के लिए चाहिए थे। अब उन्होंने लोन तो तुरंत अप्रूव कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि जब पैसे आए तो पैसे आए करीबन 12,300, तो भैया
1: पहले ही काट लिया।
0: पहले उन्होंने कहा जी मैंने प्रोसेसिंग फी भी काट ली, मैंने ये भी काट ली, और फिर उन्होंने कहा कि साहब हम पर वीक जो है 3% इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी कि आप समझ लीजिए महीने में 12%
1: इंटरेस्ट।
0: तो जितना आपने लिया नहीं उससे लगातार आपका इंटरेस्ट आता रहा और उसके बाद आप नहीं दे पाए तो गुंडों का आपको धमकी आने लग गई, आपको प्रताड़ित करना लग गया, आपकी फैमिली को टारगेट करने लग गए। तो बॉटम लाइन ये है, छोटे लालच में नहीं पड़ना। अगर किसी से पैसा मांगना है अधिकृत बैंक से मांगिए, किसी अधिकृत एजेंसी से मांगिए। ऑनलाइन तो सारे झोल हैं, सारे साइबर क्राइम के नए स्वरूप हैं, प्लीज अपने आप को केयरफुल रखिए।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से, रवि। रवि आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
3: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
3: और सभी विशेषज्ञों को नमस्कार और आने वाले स्वतंत्रता दिवस तथा सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
1: जी सवाल पूछिए।
3: हाँ जी सर, मैं जानना चाहता हूँ साइबर क्राइम जब हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए और इसे आम इंसान कैसे समझे कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है।
0: मुझे लगता है ये सवाल हर आज भारतवासी के हृदय में है कि कैसे पता लगे कि साइबर क्राइम होने वाला है।
1: जी
0: मुझे लगता है कि आप समझ लीजिए कि आप डिजिटल कुरुक्षेत्र के मैदान के केंद्र बिंदु पर आकर पकड़े हो गए हैं और आपको चारों दिशाओं से अटैक किया जा सकता है। अटैक करने वाले कौन है? साइबर क्रिमिनल्स हैं, अलग अलग पैंतरे अपनाते हैं, अलग अलग तरीकों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आप कुछ करें या ना करें, अपने रोजमर्रा के जीवन में दो आदतें जरूर आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिए।

0: पहली आदत शक की हो जाइए, दूसरी आदत कंजूस हो जाइए। शक की हर प्रकार की जानकारी जो आपके सामने आ रही है, जिसको आप सुन देख रहे हैं, उस पर शक के दृष्टिकोण से देखें जब तक कि आप उसकी पुष्टि स्वयं ना कर पाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप कंजूस हो जाइए अपने डेटा के संदर्भ में। आज हो क्या रहा है कि भारतवर्ष में एक नई क्रांति चल रही है, मैं से बोलता हूं भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहां पर सारे भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो इंटरनेट पर हो, सोशल मीडिया पर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो। कृपया अपने डेटा की उल्टी ना करें, अपने डेटा को किसी भी व्यक्ति के साथ अनावश्यक तरीके पर शेयर ना करें, बिकॉज ये डेटा आधार बन जाता है आपको टारगेट बनाने के लिए। फिर अब ये दो चीजें अब आपने दिमाग में रख ली, अब सवाल उठता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप साइबर क्राइम के शिकार हुए। अगर कोई ना कोई बंदा आपको ऑनलाइन मिलता है और वो पैसे की दिशा में आपको लेके जाता है कि आपने पैसे देने हैं, या आपको डराता है, धमकाता है, और या कहता है कि साहब आपकी नग्न तस्वीरें हम भेज देंगे, आपकी प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे, जहां जहां जो जो व्यक्ति आपको डराता है, धमकाता है, आपको पैनिक के मोड पे लाता है, वो तमाम सारे इंडिकेशन होते हैं कि साहब ये साइबर क्राइम फ्रॉड में आप फंसने वाले हैं। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग होने की जरूरत नहीं है, आज वो यकीन वाला जमाना चला गया है, आस्था ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन पता ही नहीं कि आप राम श्याम जदू से बात कर रहे हैं या किसी और व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि जागरूकता और सावधानी एकमात्र आपके मूल मंत्र हैं, आपकी सुरक्षा कवच है जो आपको बचाते हैं इस तरह के साइबर क्राइम के शिकार होने से।
1: बिल्कुल, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार से अमित उपाध्याय। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
2: जी नमस्कार, विशेषज्ञ जो भी हमारा टीम है, मैं ये सवाल है अभी कि अभी हाल ही फिलहाल में सरकार इजी जो पीएफ का जो पैसा है उसको इजी लूप में उसको सर्कुलेट करके बना दिया है, निकालने का प्रावधान कर दिया है। इसमें तो अभी मामला आया था कि ओटीपी के माध्यम से कुछ पैसा का हेर फेर उसमें भी हो जा रहा है, इसको लेकर हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि मान के चलिए वो जमा पूंजी जिंदगी भर का रहता है, हम लोग को पीएफ कटता है और वो पैसा इनसिक्योर हो जाए, तो उसको लेकर थोड़ा सा।
0: देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्योंकि देखिए पीएफ के साथ कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी की गाड़ी, कमाई, आपकी मेहनत और उस मेहनत का पसीना जुड़ा हुआ है जी। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पीएफ कट रहे हैं तो ऑफिशियल सोर्सेज या ऑफिशियल कंपनी या ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही देखें। आजकल ना गवर्नमेंट ने पीएफ की विभिन्न वेबसाइट्स दे रखी हैं, तो अच्छी बात रहती है कि ऑलवेज इन गवर्नमेंटल वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर लीजिए कि आपकी पीएफ की कंट्रीब्यूशन जमा हुई हैं नहीं हुई हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर ने नहीं जमा कराई हैं तो उन्हें निवेदन करिए कि जमा कराएं, आपकी कितना टोटल अमाउंट आया है, कितना आगे बढ़ने वाला है, थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, अगर आप सो जाएंगे तो बिल्ली तो आपके सिराने पे जो दूध है आके पी जाएगी,
1: पी ही जाएगी
0: जी। तो इसलिए आपको तो सतर्क रहना ही पड़ेगा, अगर ना सतर्क रहे तब संभावित तौर पर साइबर क्रिमिनल्स इसको हड़प सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ये मैं केसेस देख रहा हूँ कि लोग अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, छुपा देते हैं, दूसरे व्यक्ति की आइडेंटिटी को इम्पर्सोनेट कर लेते हैं और उसके माध्यम से ऑफिशियल अकाउंट से पैसा निकालने की प्रयास भी करते हैं। तो कुछ हो या ना हो, अपने पीएफ डिपार्टमेंट में लिख के दे दीजिए कि साहब मेरे अकाउंट से कोई पैसा ना निकाला जाए जब तक कि मेरे हस्ताक्षर ना हो और तब तक मैं हाजिर ना हो। इसके अलावा सावधानी, सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मूल मंत्र रहेगा।
1: बिल्कुल, तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। तो पवन जी, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, संजय। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका हमारे विशेषज्ञ से।
3: नमस्कार मुकेश सर, एक्सपर्ट सर को भी बहुत बहुत नमस्कार
1: जी। नमस्कार जी।
3: और सर, मेरा सवाल ये है कि हम क्यों हमेशा डायरेक्ट बातें ही समझने की कोशिश करते हैं, इनडायरेक्ट बातें नहीं समझते, जबकि डायरेक्ट खतरे बहुत कम ही होते हैं इनडायरेक्ट की अपेक्षा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम छोटे मोटे जब ऐसी घटनाएं होती हैं, हम राजनयिक संबंध तोड़ने लगते हैं दूसरे देशों से या और भी व्यापारिक वो गतिविधियां करने लग जाते हैं, है ना, रोक टोक की। तो ये साइबर अपराध तो हर देश की समस्या बनती जा रही, केवल भारत की या एक देश की तो है नहीं, क्यों नहीं सभी देश मिल करके इसके लिए कड़ाई से जो है नियम कायदे बनाते हैं और इसके लिए बड़े दंडात्मक व्यवस्था करते हैं, ताकि किसी भी देश में कोई भी हो, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए हर साल नुकसान होते, कितने मौतें हो रही है इसकी वजह से, हत्याएं कर रहे हैं ये लोग, ये अपराधी, तो इसके लिए क्या कोई किस युद्ध से कम है क्या ये?
0: देखिए, बहुत ही महीन और महत्वपूर्ण सवाल है आपका।

0: आज देखिए इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है। तो आप एक राष्ट्र में बैठे हुए इंटरनेट के माध्यम से किसी और राष्ट्र में विद्यमान नागरिकों को टारगेट कर सकते हैं, साइबर फ्रॉड का शिकार बना सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय कानून एक तौर पर अपने आप ही सफिशिएंट नहीं होते इस प्रकार के साइबर फ्रॉड्स को डील करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपको सूझबूझ और कोऑपरेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में भी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून आज साइबर लॉ का नहीं है जो मौजूद है। 2015 में जब मैं संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहा था, तब मैंने प्रस्ताव दिया था कि आज आवश्यकता है दुनिया को एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की ऑन साइबर लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी। लेकिन वो सन था 2015 और शायद वो समय से बहुत एडवांस वाला आइडिया आया था, तो राष्ट्र उसको बाइट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब देखिए ठीक उसी दिशा में अब संयुक्त राष्ट्र ने अब एक नई संधि को ओपन किया है। इट्स कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस आईसीटी कन्वेंशन टू प्रिवेंट द मिसयूज फॉर क्रिमिनल और इलीगल पर्पसेस। अब एक नई प्रकार की संधि आ गई है, उसके लिए हस्ताक्षर के लिए, रेटिफिकेशन के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। बाय द टाइम कंट्रीज उसको अडॉप्ट करेंगी, थोड़ा समय लग जाएगा, बट शायद ये दुनिया की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी हो जाएगी जो एक साइबर लॉ इंटरनेशनल लॉ का काम कर सके। इससे पहले केवल बुदापेस्ट कन्वेंशन रही थी 2001 में, लेकिन वो केवल एक स्थानीय ट्रीटी थी और यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी थी, बहुत से राष्ट्र इसका हिस्सा नहीं थे, भारत भी उसका हिस्सा नहीं था। तो आवश्यकता तो ये है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आजकल राष्ट्र और उनकी सरकारें इतनी ज़रा संकीर्णता से देश सोचती हैं कि उन्हें ब्रॉडर पिक्चर अक्सर नजर नहीं आता। हर सरकार कहती है, हर राष्ट्र कहता है कि भैया मुझे आज की अपनी वर्तमान स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को देखना है, मुझे ग्लोबल कोऑपरेशन को नहीं देखना। यही कारणवश है कि हम अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून इस पर बनाकर नहीं लेकर आ पाए हैं। लेकिन अब मुझे लगता है और समय की तुलना में और ज्यादा आवश्यकता हो गई है इस प्रकार के कानून को लाने की,
1: और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह का कानून बन जाएगा।
0: जी,
1: एक और श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से, विजय कुमार। विजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: मुकेश कुमार जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार जी, पूछिए क्या सवाल है।
2: नमस्कार
1: जी।
0: जी नमस्कार,
2: मैं विजय कुमार स्वामी गांव बस्तवा छत्तीसगढ़ जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
1: जी
2: जी सर, मैं ब्लाइंड हूँ 100%।
1: जी,
2: मेरा बटन का फोन है।
1: वेरी गुड।
2: अरे बटन के फोन में धोखाधड़ी हो सकती है, ये सवाल मेरा है।
0: देखिए धोखाधड़ी तो कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ नहीं हो सकती।
1: बिल्कुल,
0: तो धोखाधड़ी तो हर जगह हो सकती है, लेकिन आपका बटन वाला फोन है तो संभावित तौर पर स्मार्टफोन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वो वही काम कर रहा है जिसको जिसका उद्देश्य बनाया गया है इसको काम करने के लिए। तो आप सुरक्षित तो हैं, लेकिन कोशिश करें अपना फोन किसी के हाथ में ना दें, क्योंकि अगर वो उसका दुरुपयोग कर पाएगा तो हो सकता है आप फ्रॉड के शिकार हो पाए। बॉटम लाइन आज ये है कि हमें जो कुछ करना है खुद करना है, अपना हाथ जगन्नाथ, किसी पर विश्वास, किसी पर आश्रित रहना नहीं है। और ये स्मार्टफोन्स तो इसलिए आजकल सरदर्दी का सबब बन गए हैं क्योंकि स्मार्टफोन्स केवल आपसे फोन नहीं करते, कैमरे नहीं है, ये ना सिटिंग टाइम बॉम्ब्स हैं, लगातार हमारी हर प्रकार की जानकारी को सुनते रहते हैं और फिर डेटा आपकी इजाजत के बगैर आपके सिस्टम से बाहर निकाल के बाहर भेजते हैं, बेचते हैं। और फिर यही कारणवश है, देखिए मैं आज स्टूडियो में बैठ के मुकेश जी से बात कर रहा हूँ, उन्हें कह रहा हूँ कल सुबह मुझे बॉम्बे जाना है, मेरा फोन सुन रहा है, अगले 5 मिनट बाद मेरे फोन पर ये एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो जाएगी कि सर बॉम्बे की चीप फ्लाइट्स ले लीजिए या ये यहाँ पर चीप होटल मिल जाएंगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बातें हमारी कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं। तो अब जब आप बटन वाला फोन इस्तेमाल करते हैं तब वो फीचर फोन होता है। फीचर फोन आज की तारीख में सबसे ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि वो केवल फोन का काम करता है, कोई और नहीं करता। फिर भी जागरूकता सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मंत्र रहता है।
1: पवन जी, अगर पैसे चले गए हैं तो सबसे पहले 3 काम क्या करने होते हैं? 1930 पे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करते हैं, cybercrime.gov.in पर हम दर्ज कराते हैं, और बैंक को कब कॉल करें?
0: देखिए जब सबसे पहले जब आपको पता लगे कि आपके पैसे गए
1: जी,
0: तो पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है, हताश नहीं होना, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आपका कर्म प्रधान जीवन है, तो इस संदर्भ में आपको तुरंत सबसे पहले 1930 कॉल करना है।
1: ठीक,
0: कॉल करना इसलिए है क्योंकि द मोमेंट आपके पैसे गए हैं, आपके पैसे अभी भी शायद बैंकिंग चैनल में होंगे, तो अगर आपने उन्हें कॉल कर दिया और फोन उन्होंने उठा लिया और उन्होंने देखा कि उनके सिस्टम में नजर आ रहा है कि आपके पैसे बैंकिंग चैनल में हैं, तो आपके बैंक के पैसों को फ्रीज कर देंगे और 2-3 हफ्ते में पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो कुछ करें या ना करें, द मोमेंट पता लगे फ्रॉड हो, पानी भी नहीं पीना है, आपने तुरंत 1930 कॉल करना है। अगर वहां फोन नहीं लग रहा है तो दूसरा

0: पे आप तुरंत cybercrime.gov.in पर जाना है। अक्सर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि चलो भैया बैंक से पैसा निकला बैंक जाते
1: बैंक में जाना चाहिए।
0: भाई बैंक जाते जाते आधा पौना घंटा लग जाएगा, तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी हो जाती है। आज की तारीख में ना, पहले हम कहते थे गोल्डन आवर होता है 60 मिनट जब आपको पता लगता है कि आपके यहाँ फ्रॉड हुआ है, अब हम कहते हैं कि गोल्डन आवर श्रिंक हो गया है 10 मिनट में। अगर आपने पहले 10 मिनट में शिकायत कर दी, एक्शन ले लिया, तो हो सकता है आपका पैसा बच जाए, क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल्स 10 मिनटों में ही आपके पैसे को आपके अकाउंट से बाहर ले जाते हैं, सलामी ट्रांजैक्शंस करते हैं और फिर म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से कैश विड्रॉल कर लेते हैं। और एक बार आपके अकाउंट से कैश विड्रॉल हो गया फिर तो फिर पैसा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: एक और श्रोता जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश। राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका?
2: जी मैं आपका और उपस्थित विशेषज्ञ का बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ।
1: जी नमस्कार।
2: और मेरा सवाल ये है, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ।
1: जी
2: मेरा सवाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुजुर्ग रहते हैं और महिलाएं होती हैं,
1: जी
2: यदि किसी कारणवश उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो कहाँ पर अपना बयान दें और कहाँ पर अपनी शिकायत लेकर जाएं, थोड़ा सा बताइएगा।
0: देखिए अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, महिला हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज केंद्रीय सरकार आपको कहती है कि साहब कुछ ना करिए, अपने घर बैठे अपने ही फोन से तुरंत नंबर कॉल करिए 1930। कहीं धक्के खाने की आवश्यकता नहीं, वहां आपका केस दर्ज भी हो जाएगा ऑनलाइन, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगी। ना करना चाहें और वो फोन ना उठे तो आप cybercrime.gov.in पे जा सकते हैं और वहां पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि साहब हमें कहीं ना कहीं थाने जाना है
1: जी,
0: और भाई थाने जाने में करीबन आधा पौना घंटा घंटा लग जाएगा, तब तक जितने पैसे हैं सब निकल चुके होंगे। तो थाने जाने की जल्दबाजी ना करें, अपना बयान देने की जल्दबाजी ना करें। भाई जब आग लगी है तो सबसे पहले आग को बुझाना है। आज जब पैसे गए हैं तो सबसे पहले दायित्व बनता है कि हम कैप्चर करें क्या वो बैंकिंग चैनल में है। अगर कहीं पर भी है तो उस बैंकिंग चैनल में उस पैसे को फ्रीज कराना है। एक बार फ्रीज हो जाएगा अपने वापस आ जाएगा। हाँ एक बार आपने 1930 पर या cybercrime.gov.in पर शिकायत कर दी, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके बाद आप बैंक जाइए, लिखित में शिकायत कर दीजिए और ये जो आपने ऑनलाइन शिकायत करी है उसका रेफरेंस नंबर भी आप जरूर दे दीजिए, सो दैट बैंक को पता लग जाए कि साहब आप हवाबाजी नहीं कर रहे। अक्सर क्या करते हैं, बैंक आपको डरा देते हैं, धमका देते हैं, दौड़ा देते हैं, भाग जाओ कि तुम्हारी गलती है, तुमने गलत काम किया था। भाई आज आपका पैसा आपकी गाड़ी कमाई है, अगर वो आपके अकाउंट से आपकी इजाजत के बगैर निकला है तो साइबर क्राइम है, 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है, धारा 66 भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। साथ ही साथ ये बैंक जो है ये इंटरमीजरीज हैं, उनका दायित्व बनता है कि जब द मोमेंट आप बताएं कि साहब मेरा ये अनऑथराइज ट्रांजेक्शन गया है, तब दायित्व उनके ऊपर होता है कि वो देखें कि साहब ये ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: और वो ये नहीं कह सकते कि साहब आपने यूजर आईडी पासवर्ड इस्तेमाल किया है, ओटीपी इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि वो ओटीपी का दुरुपयोग हुआ है। बहुत सारे बैंक आपको जलेबी की तरह घुमाते हैं, लेकिन आपको घूमने की आवश्यकता नहीं, वहां जाइए बैठ जाइए कि साहब आपका दायित्व बनता है, आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप ये पैसे दिलाइए, वरना इस पैसे की आपकी जो क्लेम होता है आप बैंक से मांग सकते हैं। क्योंकि देखिए बैंक की आवश्यकता कानून में होती है कि वो ड्यू डिलीजेंस सावधानी करे जब वो अपनी ऑब्लिगेशंस या ड्यूटियों का निर्वाह कर रहा है, यह है सेक्शन 79 भारत के आईटी एक्ट के तहत। और अगर वो नहीं करता है तो कानून कहता है जिम्मेवारी पैसा वापस दिलाने की बैंक की है। तो आप हताश ना होइए अगर बैंक आपको दाएं बाएं करे, आपको बैंक को कहना है कि साहब मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है या अनावश्यक तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ये मेरी ऑनलाइन कंप्लेंट है, आप मुझे पैसा दीजिए, अगर मेरा पैसा चला गया तो मेरे पैसे की भरपाई करने की जिम्मेवारी भी आपकी है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, रामजी। रामजी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछें क्या सवाल है।
3: जी जी नमस्कार सर जी, बहुत अच्छा विशेषज्ञ लोग जानकारी दे रहे हैं। अभी कह रहे थे कि अगर आप सो गए तो बिल्ली दूध पी जाएगी तो बहुत अच्छा लग रहा था।
1: जी जी सवाल पूछिए।
3: जी प्रश्न कुछ इस तरह से है कि हमारा यूज करने वाला मोबाइल और सिम गुम हो गया है और उसके साथ साथ वो बैंक से जुड़ा हुआ है
0: जी,
3: तो उसमें भी ना पैसा निकल जाने की व्यवस्था हो सकती है, तो हम क्या करें क्या ना करें, अगर मोबाइल हमारा गुम गया तो कितना जल्दी हम क्या करें ना क्या करें, यही जानकारी हम लेना चाह रहे हैं सर जी।
0: जिस वक्त पर आपको पता लगे कि आपको मोबाइल फोन गुम हुआ है या अवेलेबल नहीं है, तुरंत सबसे पहले आपने अपने मोबाइल कंपनी को कॉल करना है और उन्हें कहना है कि मेरा फोन नहीं मिल रहा है, मेरा सिम को ब्लॉक करिए, क्योंकि आपकी सिम के साथ आपके बैंक अकाउंट जुड़े हैं, ट्रांजैक्शंस जुड़े हुए हैं। तो द मोमेंट आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा उसका सीधा असर ये होगा कि कोई बैंकिंग

0: ट्रांजेक्शन आपके साथ नहीं हो सकती। आजकल ना बहुत ये सिम स्वैप फ्रॉड्स होते हैं, आपका फ़ोन चुराते हैं, फिर आपकी नाम पर आपकी झूठी आईडी बनाकर वो डुप्लीकेट सिम ले लेते हैं। और फिर डुप्लीकेट सिम का मतलब ये होता है कि जितने सारे OTPs आपके अकाउंटों में जाने हैं, आपके फ़ोन पे आने हैं, वो उनके पास आने शुरू हो जाते हैं और आपका बैंक धीरे धीरे अकाउंट खाली हो जाता है। तो एक्शन तुरंत लेना है। एक बार आपने इन्फॉर्म कर दिया इस टेलीकॉम कंपनी को, उसके बाद तुरंत आप कॉल करिए 1930 पर, क्योंकि ये जो फ़ोन का चोरी करना ये भी एक दंडनीय अपराध है धारा 66 बी भारत के IT एक्ट में, और ऑफकोर्स भारतीय न्याय संहिता के अंदर तो ये चोरी के अंदर आता ही है। तो आप इसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ब्लॉक करवाना ज़रूरी है, और डुप्लीकेट सिम बाद में इंश्योर का ले लीजिए, इशू करा लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि जो कुछ करना है जल्दी करें।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश। राकेश जी क्या सवाल है आपका?
2: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई शिमला
1: जी।
2: और मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि दिव्यांग व्यक्ति है, अगर उनसे अगर साइबर क्राइम में अगर आप गए हैं किसी कारणवश, तो वो किस तरह से जो है बच सकते हैं?
0: देखिए,

0: करा लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि जो कुछ करना है जल्दी करें।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश। राकेश जी, क्या सवाल है आपका?
2: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई शिमला।
1: जी,
2: और मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि दिव्यांग व्यक्ति है, अगर उनसे अगर साइबर क्राइम में अगर आप गए हैं किसी कारणवश, तो वो किस तरह से जो है बच सकते हैं?
0: देखिए, अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो बचने का तो एकमात्र तरीका यह है कि आपको सावधानी जो है ना अपने रोज़मर्रा के जीवन में हिस्सा बनानी पड़ेगी। दूसरा, हम लोगों की मानसिकता ऐसे होती है कि साहब मैं अपने फ़ोन पर कुछ भी करूं, कुछ गड़बड़ होगी तो सरकार की जिम्मेवारी होगी। भाई, सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन अब हमको नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं आवश्यकता होगी कि हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। बेसिकली सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ये एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन फ्रॉड्स और विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल, और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना कितना आवश्यक है। याद रखिए तीन बातें। पहला, कोई भी OTP CVV पिन फोन पर मत बताइए। दूसरा, कभी भी किसी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक मत कीजिए। और तीसरा, धोखा हो जाए तो तुरंत डायल कीजिए 1930 साइबर हेल्पलाइन। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि डिजिटल नागरिक सुरक्षित नागरिक है। आज के पब्लिक स्पीक में इतना ही। हम अपने सभी श्रोताओं का, जिन हमसे आज जुड़े हैं, और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी का आभार व्यक्त करते हैं। पवन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और नए मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेशे आते हैं।

0: आते हैं।
1: संडे से आते हैं कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में अपने मनचाहे गीतों को सुनना चाहते हैं तो जल्दी से हमें गीत के बोल, फिल्म का नाम और अपना नाम व पता लिखकर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर 9474234000। तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज, जिसे भेजा है बकुंतला रंगत से अनुप कुमार रॉय ने। इनकी पसंद पर लीजिए सुनिए मन फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

अब पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा झारखंड से शिव गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांशी गोप और संगीता गोप की फरमाइश पर अब हम आपको सुनवा रहे हैं रफू चक्कर फिल्म का ये गीत, आवाजें हैं शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की।

पात्रपुर श्री विजयपुरम से निर्मला, तनिषा और हर्ष की फरमाइश पर लीजिए अब सुनिए जीत फिल्म का ये गीत। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और साधना सरगम।

श्रोताओं, संडे से आते हैं कार्यक्रम में, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। श्रोताओं, एक सूचना, क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो, अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर

प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने ज़िले को अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने ज़िले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, संदेशे आते हैं कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है और कार्यक्रम की अगली फरमाइश है भरतपुर शहीद द्वीप से पंकज और इंदु की। इन दोस्तों की पसंद पर अब सुनवा रहे हैं राम जाने फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं उदित नारायण, साधना सरगम और साथियों की।

कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश है कमल बस्ती कैमलबे से रोशनी दिव्या और जेनी का। इन दोस्तों की पसंद पर आइए अब सुनते हैं कुमार सानू और आशा भोसले के युगल स्वरों में जानते रे नाम फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, चलते चलते एक बार फिर हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें ताकि आप हमें अपनी फरमाइशें भेज सकें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर 9474234000। आपकी फरमाइशों का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को विशेष चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय इलाकों में हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जिसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। अतः मछुआरों को 6 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:25 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज मंगलवार है, शक सम्वत 1948 के श्रावण माह की 13वीं तिथि तदनुसार 4 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:28 और 40 सेकंड हुए हैं। अपनी आज की पहली सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: लीजिए सुनिए अनमोल विचार।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, आप स्वयं वो परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यदि दुनिया में बदलाव देखना चाहते हो तो शुरुआत स्वयं को बदलने से करें। दूसरों की कमियां खोजने से बेहतर है कि हम अपने विचारों, व्यवहार और आदतों को बेहतर बनाएं। जब हम स्वयं बदलते हैं तो हमारा परिवार, समाज और वातावरण भी सकारात्मक रूप से बदलने लगता है। छोटे छोटे अच्छे परिवर्तन ही बड़ी सफलता और सुखी जीवन का आधार बनते हैं।
0: ये था अनमोल विचार। अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मातृ वंदना से।